0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

दिखाओ। जानते हो आज के दिन को मैं ना क्या कहती हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिंपली आफरीन और अब सिंपल भाषा में पूछूं तो आज का दिन आपके लिए क्या है? आप बोलोगे आज तो वेडनेसडे है आफरीन, लेकिन आफरीन के लिए ना आज का दिन होता है उम्मीद वाला दिन। हाँ जी, वो दिन जहाँ पर हफ्ते का एक ऐसा दिन जहाँ आपने मेहनत तो की है बहुत, ठीक है, यू आर जस्ट पुटिंग योर सेल्फ टुगेदर, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, एक रूटीन में रहते हो और बहुत मेहनत करते हो ये पूरा हफ्ता, एंड देन कल का दिन से एक वीकेंड आता है आपके लिए, एक दिल में उम्मीद लेकर आता है कि हाँ अब वो दिन आएगा जहाँ पर हम अपने लिए जिएंगे, कुछ अपने लिए वक्त निकालेंगे। एंड वेनसडे ना इसी उम्मीद में कि हाँ अब ये चीज़ें आने वाली है, तो इसलिए मैं कहती हूँ उम्मीद वाला दिन, इसी उम्मीद में इसी सोच में ना दिन थोड़ा सा ना खुशी से ही गुजर जाता है, थोड़े से एक तसल्ली दे देता है वेनसडे। तो उम्मीद के साथ साथ इसे तसल्ली वाला दिन भी कह सकते हो। और फिर आएगा ना हमारा थर्सडे फ्राइडे खुशियों वाला दिन, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो इसी उम्मीद और तसल्ली के साथ शो की शुरुआत करते हुए कि यार उम्मीद है अच्छी बातें होंगी और तसल्ली है कि यार आफरीन है तो अच्छे गाने भी बजेंगे। राइट हियर ऑन वर्चुअल मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: हाँ मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो।
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर यहाँ क्यों तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
4: आप मेरे यहाँ बजाने वाले थे, बजाने वाले थे। हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है, गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ, कॉल नाउ 7070-7687।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, it's hot.

ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे बताओ यार, बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जब आप ले जाते हो, छोटे जो होता है ना चिंटू से, तब आपको भी बहुत दिल में ऐसे धक धक होता है ना कि यार कैसे? मेरे ख्याल से ना बच्चों से ज्यादा प्रिपरेशन ना पेरेंट्स की होती है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड वेल, टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन, सिद्रा मेडिसिन अब लॉन्च किया है एक न्यू सर्विस जिसे कहते हैं पीडियाट्रिक प्राइवेट होम विजिट्स वेलनेस एंड वैक्सीनेशन. हाँ जी, जहाँ एलिजिबल चिल्ड्रन को सर्टन रूटीन पीडियाट्रिक केयर घर पर ही मिल सकती है. हाउ कन्वीनियंट इज दैट? एंड इट्स नॉट ओनली वैक्सीनेशन. सिद्रास पीडियाट्रिक टीम कैन डू रूटीन वेलनेस assessments, growth and developmental monitoring, feeding guidance or parents education and scheduled childhood vaccinations depending on the child's need. अब एक important clarification ये है, ये automatically कतर के हर child के लिए open home call service नहीं है. It's currently eligible for Sidra medicine patients and every request पहले clinical reviews से गुजरता है to make sure के home care is safe and appropriate. Availability भी operational capacity पर depend करेगी. And this is for routine care, not emergency or urgent medical conditions. So, अगर आपका child Sidra का patient है या आप जानना चाहते हैं कि your child is eligible or not, you can check directly with Sidra on 400-333-333. I repeat, Sidra का number है 400-333-333 पर आप check कर सकते हैं if your child is eligible for this routine home check. Okay, and I quite like the idea though, healthcare को family के लिए थोड़ा मोर कन्वीनियंट बनाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वेदर इट्स मेडिकली अप्रोप्रिएट. बस एक प्रॉब्लम सिद्रा सॉल्व नहीं कर पा सकता, दैट इज वैक्सीन घर पे हो या हॉस्पिटल में, इंजेक्शन देकर मुझे नहीं लगवाना, रोना धोना बच्चों का वो टेंट्रम शो करना वाला सीन. आई एम श्योर हर पेरेंट इससे गुजरता ही है ना. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: पढ़ना छोड़ दे।
1: खटखट हू दैट?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
3: Mic check, bole. क्या बोल रहे ले काली बॉय?
4: क्या बोल रहे MC Sher?
3: अरे अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए।
4: करते ना अब पटेलों के लिए भाई।
3: अपने पाशा लोग के लिए।
4: ओ एक नंबर।
3: तुम किधर हो तुम अभी?
4: बॉम्बे 17 में बात। तुम किधर हो?
5: पास नाइन 98.3 Mirchi।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत्सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र ही हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: FM मिर्ची.

0: वेल, मधुबंती बागची की आवाज में ये गाना राइट हियर फीचरिंग वन एंड ओनली राशा थडानी, यानी अब तो आप भूल भी गए होगे ना, रवीना टंडन की बेटी इस गाने में थी एंड शी हैड अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस यार। और मुझे लगा था इस गाने के बाद, इस मूवी के बाद में वील सी हर इन मोर मूवीज, बट वैनिश्ड, व्हाई सो आई डोंट नो। Very good morning and welcome back. Simply Afreen here, aapke saath, writer on Mitchy Mornings, and a lot of good morning messages. Harpal Sandhu from Dukhan kehte hai, good morning Afreen, have a great day. Says Ali Shan, good morning to you too. Rise and shine, voice of gold. वाओ इमरान, आपके मैसेजेस बहुत ही मज़ेदार होते हैं सुबह सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। एंड नाज़नीन जी का भी कहना है वेरी गुड मॉर्निंग। सो वेल, 5000186 इज़ माई मॉर्निंग नंबर, आई मीन व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल्सो माई मॉर्निंग नंबर। यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ज़रा तापमान पर हाल चाल देखते हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: Well, weather still says the same thing actually, 41 degrees Celsius maximum, 31 minimum, और जो है humidity भी बरकरार है, कल की तरह ही 70% पर है। हवाएं काफ़ी धीमी सी, ना के बराबर 8 किलोमीटर पर आवर पर चल रही हैं। ऑल इन ऑल वेदर तो वैसे देखो कहने के लिए तो वही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस तो ज़रूर हो रहा है शाम के वक्त स्पेशली कि ये बेटर हो गया है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराने वाला है। There's something really, एक फील गुड वाली फीलिंग है ये गाने में, है ना। सोना महापात्र की आवाज में फुकरे मूवी का ये गाना ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: What a beautiful track, yeah. Saad Lamjan ki awaaz, American singer Shreya Ghoshal ka saath, and probably I think so Shreya Ghoshal filhal to ek aisi hamari singer Indian cinema ki, Indian industry ki dikh rahi hai, jo koi bhi international collab kitne hi effortlessly kar sakti hai. But after this beautiful song, let's go ahead with thoda sa 90s ki taraf lekar jati hu. Sukhi Bhaji aur Alka Yagnik ki awaaz mein agla gana from the movie Taal is gonna get you so nostalgic. Lekin usse pehle Mirchi Ghadi का इशारा जो है वो हो रहा है 7:04 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

0: सुखी बाजी और अलका याग्निक की आवाज में व्हाट अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ताल ट्राई टू डन बिर्ची. और देखो कोई भी चीज ना एक दो बार करना इजी होता है ना, लेकिन किसी कल्चरल ट्रेडिशन को हफ्ते दर हफ्ते कंटिन्यू करते हुए उसके 100th एडिशन तक पहुंचाना, दैट डिजर्व्स अ लिटिल सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और बात करते हैं अबाउट इंडियन कल्चरल सेंटर अंडर द एजीज ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कतर, उनके बारे में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 100th एडिशन ऑफ इट्स वेनसडे फिएस्टा टुडे 30th September. वेल, अगर आप ICC के वेनसडे फिएस्टा से फेमिलियर नहीं है, देन लेट मी टेल यू, इट्स बेसिकली अ वीकली प्लेटफॉर्म सेलिब्रेटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एस्पेशली फॉर आर इंडियन कम्युनिटी हियर इन कतर. वेल, 100th एडिशन को स्पेशल बनाने के लिए आज शाम को रेनाउंड गजल और हिंदुस्तानी सिंगर पद्म कुमार जी ये स्पेशल गजल परफॉर्मेंस यहाँ पर आज देने वाले हैं, अलॉन्ग विद म्यूजिक, डांस एंड अदर कल्चरल परफॉर्मेंसेज. वेल, ये शाम को आज शुरू होता है 7 बजे एट ICC अशोका हॉल. एंड द इनविटेशन, द ब्यूटीफुल, द ब्यूटी पार्ट इज दिस ओनली कि इनविटेशन जो है इट्स ओपन फॉर एवरीवन. तो अगर आप गजल के बहुत शौकीन हैं एंड यू रियली वांट टू फिल इन द इवनिंग विद लिटिल म्यूजिक गजल और अपने देश के कल्चर वाली फीलिंग चाहिए, देन डेफिनेटली यू शुड हेड टूवर्ड्स ICC अशोका हॉल टू सेलिब्रेट द 100th एडिशन ऑफ वेनसडे फिएस्टा टुडे. मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची. Like the next track, Kailash Khair ki awaaz mein on Mirchi, it's hot.
1: Preet ki lat mohe aisi lagi.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua, la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुधर रहा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
7: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

वैसे अलाउड है क्या इस खूबसूरत गाने के बाद बात करने का? वेल सीरियसली कुछ गाने आपको स्पीचलेस कर देते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. सोनू निगम की आवाज में आई गेट लॉस्ट या व्हेनेवर आई हर्ड टू दिस सॉन्ग दैट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी साथिया. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और जरा बॉलीवुड से निकलकर थोड़ा सा खेल जगत की तरफ जाते हुए बात करते हैं अबाउट गल्फ कप. यस फुटबॉल फैंस, आज रात का प्लान जो है नोट कर लीजिए बिकॉज टीम कतर का गल्फ कप में एक इंटरेस्टिंग मैच है. सेमीफाइनल की देखो टेंशन नहीं है, वो टिकट ऑलरेडी अपने पॉकेट में है. लेकिन आज बात है दैट ग्रुप में नंबर वन कौन फिनिश करने वाला है. वेल कतर इज गोइंग टू फेस यूएई टुनाइट इन द 27th Arabian Gulf Cup at Al-Inma Stadium, King Abdullah Sports City in Jeddah. यहाँ पर होने वाली है और कतर की टाइमिंग के हिसाब से ये शाम 7:30 बजे शुरू होने वाली है. वेल ये बता दूं, दोनों टीम्स हैव हैड अ परफेक्ट स्टार्ट. कतर ने डिफेंडिंग चैंपियंस बहरीन को 2-0 से हराया, फिर यमन को 1-0 से बीट किया. सो टू मैचेस, टू विंस, 6 पॉइंट्स. और इंटरेस्टिंगली कतर ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है. यूएई भी 6 पॉइंट्स पर है बट उनका गोल डिफरेंस बेटर है बिकॉज दे हैव स्कोर्ड 7 गोल्स विदाउट कंसीडिंग. ठीक है, इसलिए यूएई के लिए ड्रॉ भी अगर आज की मैच होती है ना तो दैट्स इनफ टू हैव अ फर्स्ट पोजिशन इन द ग्रुप. बट कतर को ग्रुप बी टॉप करने के लिए विन यानी आज की मैच की जीत बहुत ज्यादा जरूरी है. और अब सेमीफाइनल पिक्चर भी क्लियर है. आज जो ग्रुप बी टॉप करेगा वो 3 अक्टूबर को ओमान फेस करेगा वाइल ग्रुप बी रनर अप फेसेस सऊदी अरेबिया. सो 7:30 PM टुनाइट कतर वर्सेस यूएई क्वालिफिकेशन हो चुकी है. अब बात है मोमेंटम की, टॉप स्पॉट की और सेमीफाइनल से पहले एक और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की. ऑल द वेरी बेस्ट अलनावी. मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक. राइट रन मिर्ची. That's hot.

0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना आपने 90s का सुना राइट हियर एंड हाउ स्ट्रेंज ना कि आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग होंगे जिसने ये गाना बहुत साल बाद सुना है ना, लेकिन स्टिल यू कुड सिंग अलोंग विद द सॉन्ग, है ना। दैट्स द ब्यूटी यार ऑफ हमारे 90s गाने, है ना। Very good morning and welcome back. Simply Afreen is right here with my sawal and with your jawab. I hope you are ready. मतलब हमारा lights camera scene test खेलने का वक्त हो गया है जहाँ मैं scene सुना रही हूँ boss and you have to tell me which movie is this scene from. And I think so this one is quite easy. ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए 5000 1896 is my WhatsApp number. आप ready रहिएगा और scene सुनो और तुरंत बताओ कि कौन सी movie से है ये scene.
1: Lights camera. Scene test.
2: माफ कीजिएगा सर, कुछ लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत पाते नहीं। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर।
3: ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूँ करण की मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना।
0: ओके, अब ये आवाज के बाद में यू रियली नीड सम मोर ऑडियो हिंट्स। नॉट एट ऑल, वॉज टू इजी नाउ टू गेस। 5000 1896 इज माई नंबर। व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, मतलब व्हाट्सएप पर आप टाइप्ड मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। बट व्हाट आई सी ऑलरेडी माई व्हाट्सएप इज यहाँ पे फ्लडेड विथ मैसेजेस। लेट मी गो एंड रिप्लाई टू देम। मीनवाइल आप मधुबंदी वागची की आवाज़ में आग लगाना एंजॉय कीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन इज वेटिंग फॉर यू राइट ऑन विच इट्स हॉट।

0: Well, that was Sanju Rathod ki awaaz mein ye gana Right Here on Virchi. Very good morning and welcome back. जी हाँ, मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो आ गई है, लेकिन अकेले थोड़ी आई है, उसके सवाल के साथ आई है, जहाँ हम और आप मिलकर यहाँ पर खेल रहे थे लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. एट दिस पॉइंट आई रियली फील कि मेरे स्टूडियो में ना ये सारे लोग मौजूद रहते हैं, जिन जिन की आवाज़ें आती है, जिन जिन के मैसेजेस आते हैं. एट दिस रियली पॉइंट आई फील कि नहीं नहीं मैं अकेली यहाँ नहीं बैठी हूँ. सो थैंक यू सो मच फर्स्टली कि यार सही हो गलत हो जो भी हो, जब भी आपके आंसर्स आते हैं ना यहाँ पर अच्छा लगता है. नाउ लेट्स गेट बैक टू आर सवाल. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का आज का सीन कौन सा है? इजी पीजी वाला था, चलिए सुन लेते हैं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: माफ कीजिएगा सर, कुछ लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत पाते नहीं. हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर.
0: ओके, बस इसके आगे मैं नहीं सुना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी हो गया था आज का तो, है ना, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर. लेट मी टेल यू किन किन के नाम है. पहले आफताब का मैसेज है, नदीम, संजीवा, वसीम का मैसेज आया है, नवेद अहमद का मैसेज है, देन आई हैव योर त्रिशा एज ऑलवेज मैसेजिंग अस, काशिफ, चार्ली, जाहिद, देन हु इज दिस, अंजू का मैसेज आया है, देन आई हैव रवि also messaging us, then of course as always then I have Kumail and Suleiman being the first person to message like always, aur Akhtar sahab ka bhi ek bada sa voice message bhi aaya hai. Huzaib has message, Mohsin ne message kiya, Mohammad Yusuf Khan, and the list is long. Abdul Rahman, aur kaun hai ye? Yes, Samaira, har roz ki tarah, thank you so much. Lekin answer kya hai wo to sun le.
3: मॉर्निंग आफरीन.
0: गुड मॉर्निंग. हाँ जी अल्ताफ.
3: मूवी में भी मोहब्बत है.
0: ओके,
4: मैं आफरीन, दिस इज नवेद हियर.
0: हे नवेद,
4: दिस इज आवर अनदर मूवी, शाहरुख खान मूवी ऑफ
0: मोहब्बत है. हाँ जी,
4: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
4: मूवी नेम इज मोहब्बत है.
0: बिल्कुल सही नदीम.
4: अमिताभ बच्चन.
0: बिल्कुल सही.
4: ऐश्वर्या राय.
0: ओके,
4: दिस इज नदीम.
0: ऑल राइट,
5: दिस मूवी इज मोहब्बत है.
0: हाँ जी,
5: कास्ट बाय शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय.
0: Okay, that is absolutely the right answer. And is bar there were absolutely no wrong answers at all. And obviously, yaar, Karan Johar ki movie, nahi, Karan Johar ki nahi thi, to Aditya Chopra ki thi na, if I'm right. Hai na? Are, किसकी थी मुझे बताओ जरा ये, मैं अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. मोहब्बत है आदित्य चोपड़ा की थी, राइट? यश बैनर्स की तो थी जहां तक मुझे याद है, लेकिन यस, डायरेक्टेड बाय मुझे याद नहीं आ रहा है. अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे अच्छे गाने थे यार इस मूवी में. वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट. मैंने सोचा कि ये वाला ना बहुत साल से आपने सुना नहीं होगा. सो लेट्स प्ले दिस, उदित नारायण, जसविंदर नरूला और उद्भव की आवाज में.
6: सोनी सोनी,
0: एक सोना सोना गाना, सोनी सोनी कुड़ी सी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा बताते हुए सुबह के 8:01 की तरफ फर्क लगाना बेनी दयाल शाल मलिक होलगड़ी की आवाज में राइट ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: वेल रेस टू से ये गाना राइट हियर बेनी देओल और शांगली खोलगड़ी की आवाज में जुड़ गई है आपके साथ। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और देखिए, वक्त हो चला है कि मैं आपके इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर असर डालूं, क्योंकि मैं अब आपको गोल्ड के अपडेट्स देने वाली हूँ।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल देखिए, गोल्ड के अपडेट्स कुछ इस तरह से है। पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 566 कतरी रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2650 कतरी रियाल। 10 ग्राम गोल्ड बार जो है वो 5228 कतरी रियाल है। 1 आउंस गोल्ड बार इज फॉर 16160 कतरी रियाल एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 59990 कतरी रियाल। और कल ही इनफैक्ट मेरे भाई ने बोला कि आफरीन, इतने बड़े बड़े 10 तोला गोल्ड बार के तुम रेट सुनाती हो कि भाई कौन है वो। लेकिन मैं बता दूं भाई, वो लोगों के लिए जिनके पास ये सवाल रहता है कि ये जो गोल्ड बार जो होते हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सही चीज होती है। देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु कंसीडर दिस एज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। सो वेल, अब आपको समझ में आया कि ये क्यों इतने फायदेमंद रहता है। सो इसीलिए मैंने बताया आपको, हर रोज की तरह हम गोल्ड रेट्स बताएंगे, सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन देखो भाव पे नजर हमेशा रहनी चाहिए, लाइक यू डिड नाउ। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए दर्शन रावल की आवाज में मित्रों से ये गाना। ऑनेस्टली ये जो गाना वाइब देता है ना, एक फेस्टिव वाइब देता है जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ ज्यादा फील होगी, है ना। एंजॉय टर्न मिर्ची साथ।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
5: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
5: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
5: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
5: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
5: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं.
5: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
5: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
5: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
5: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
5: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
7: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
8: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
7: हाफ पे बैक मतलब?
8: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
7: वाओ, किस किस चीज पे?
8: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
7: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी.
8: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
9: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
10: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
11: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
9: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
12: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. आपकी चॉइस की लोअर प्राइस पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगी. ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम 26 टू 30 सितंबर. तो टेंशन मत लो, ऑर्डर नाउ फ्रॉम पापा जॉन्स एंड डबल द टेस्टी फन. वैलिड ऑन ऑल पिज्जा साइजेस. पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा.
13: खटखट
14: पुरेर
13: बनता
14: बनता हूँ.
13: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
14: खटखट पुरेर
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

बहुत साल बाद ये गाना सुना है एंड यू आर लाइक यार ये गाना कहीं तो सुना था, 90s के टाइम पे सुना था। लेट मी टेल यू, महालक्ष्मी अय्यर और शेखर रावजानी की आवाज में ये गाना था फ्रॉम द मूवी प्यार में कभी कभी। एंड इफ यू आर वंडरिंग दैट विच मूवी इज दिस, देन लेट मी टेल यू, डीनो मोरिया और रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना की जो बहन थी, हाँ उनकी ये मूवी थी। आई एम श्योर यू स्टिल डोंट रिमेंबर बट यू रिमेंबर नाउ, मुस मुस हंसी दिन लाई, यस दैट इज द मूवी। अब याद आया कुछ? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड वंस आफरीन गेट्स लॉस्ट इनटू बॉलीवुड ना, भूल जाती है काम की बात करने आई है। सो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, जहां पर आईपे के मजेदार एक्सचेंज रेट सुना रही हूँ मैं आपको। वेल, आज के आईपे के एक्सचेंज रेट ये कहते हैं दैट 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.26, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.11 और अगर बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.74, वेयर एज 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज 90.81 एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.03। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड सुनते रहिएगा माइक से दिल तक आफरीन को, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Festivities keep planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamond काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
8: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि

आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना माय गॉड कैरी सो मेनी मेमोरीज, रहना है तेरे दिल में का टाइटल ट्रैक दिस मूवी एंटायरली आई एम श्योर इज वेरी क्लोज टू मोस्ट ऑफ द मिलेनियल्स। और ये हम वो मिलेनियल्स की कैटेगरी है ना कि जहां हमने रोमांस वोमांस कुछ थोड़ा बहुत सीखा था ना वो टाइम पर, समझने की कोशिश की थी, और ये मूवी उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करती है, करती है नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन जुड़ गई है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड अपना पिटारा बस खोल के आपके लिए एक नया सवाल लेकर आई है। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। राइट, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में ध्यान से सुनिए, आज जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ ना आपको, इनफैक्ट कुछ थोड़ा सा अलग है। वो ऐसा है कि मैं शाहरुख खान की यहाँ पर पांच मूवीज आपको बता रही हूँ, 90s में रिलीज हुई ये पांच फिल्म है, जो रैंडम ऑर्डर्स में आपको बता रही हूँ। आपने मुझे बताना है ये रिलीज डेट के हिसाब से पहले कौन सी रिलीज हुई थी, दूसरी कौन सी हुई थी और तीसरी कौन सी हुई थी, ठीक है? पांच मूवीज है शाहरुख खान की, यू हैव टू पुट इट इन द राइट ऑर्डर ऑफ रिलीज, ओके? स्टार्टिंग फ्रॉम विच वॉज रिलीज फर्स्ट एंड एंडिंग ऑन विच वॉज रिलीज द लास्ट, समझ गए ना गेम अब, ठीक है? तो मूवीज कुछ ऐसी है, बाजीगर, बादशाह, डर, करण अर्जुन एंड यस बॉस। आई रिपीट, ये मूवीज को आप रिलीज के अनुसार, जो पहले रिलीज हुई थी उसके अनुसार फिर दूसरी, इसे राइट ऑर्डर में डाल दीजिए। मूवीज कुछ ऐसी है शाहरुख खान की, बाजीगर, बादशाह, डर, करण अर्जुन एंड यस बॉस। आई रिपीट, बाजीगर, बादशाह, डर, करण अर्जुन, यस बॉस। कौन सी मूवी है जो पहले रिलीज हुई थी और कौन सी इसमें से लास्ट हुई थी, और बीच में पूरा सही क्रम होना चाहिए, ठीक है? अब अगला गाना जो प्ले कर रही हूँ, आई एम श्योर अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना सुनते ही हमारे एक लिसनर बड़े खुश होने वाले हैं।
1: मेरी जिंदगी का सफर खो गया है।
0: वेल, इफ यू आर लिसनिंग, एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कि हाँ जी आफरीन आपने हमारा फेवरेट वाला गाना बजाया। एंजॉय दिस ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: दोस्ती का कुछ सुले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, that is Varun Jain, Shilpa Rao aur Sachin Jigar ki awaaz mein ye gaana right here on Mirchi. Main hoon Afreen aapke saath. और देखा आज कुछ नया पेश किया ना मैंने मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से. वेल अक्सर ना मैं जब इजी वाला देती हूँ तब आप बोलते हो कि टू इजी आफरीन, और जब मैं कुछ डिफिकल्ट लेकर आती हूँ तब करते हो कि अरे हाँ यार ये तो डिफिकल्ट रहा है. सो लेट्स सी आज का सवाल क्या था. मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. वेल देखिए आज ना मैंने शाहरुख खान की मूवी सी बताई. एंड कौन शाहरुख खान का फैन नहीं है. हाँ होते हैं कुछ जो शाहरुख खान के नहीं सलमान खान के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन होते हैं, लेकिन यार शाहरुख खान की मूवीज सभी को पता है. और ये जो मूवीज़ थी इनकी 90s की स्पेशली, उसको सही क्रम में लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ द रिलीज डेट. कौन सी पहले रिलीज हुई है, फिर कौन सी बाद में, फिर कौन सी तीसरी, ऐसे करके. ठीक है, और मूवीज़ कुछ ये थी, बाजीगर, बादशाह, डर, करण अर्जुन एंड यस बॉस. ये मैंने रैंडम ऑर्डर में आपको बताया है. ठीक है ना, बाजीगर, बादशाह, डर, करण अर्जुन, यस बॉस. आपने सही क्रम में इसे लगाना था. सो किसके मैसेजेस आए हैं, लेट्स चेक दैट. यहाँ पर माफ नहीं करना है, यहाँ पर आंसर सुनाना है.
1: यस, करेक्ट ऑर्डर इज द फर्स्ट मूवी रिलीज.
0: हाँ जी,
1: बाजीगर.
0: ओके,
1: सेकंड मूवी रिलीज इज डर.
0: ऑल राइट,
1: थर्ड मूवी व्हिच हैज बीन रिलीज एज दैट इज
0: सुधीर. ओके ओके, ऑल राइट. ओके ओके, एंड देन वी हैव, थैंक यू सुधीर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. ओके, यस सोनी,
2: डर, करण अर्जुन, यस बॉस एंड बादशाह.
0: ओके, दैट इज द राइट ऑर्डर. बिल्कुल सही जवाब है आपका. इनफैक्ट आई हैव राज यहाँ पर जिन्होंने मैसेज किया है. अभी इनका वॉइस मैसेज आया है. सॉरी राज, मैं अभी प्ले नहीं कर सकती, लेकिन राज ने विद द ईयर यहाँ बताया कि बाजीगर 93 में रिलीज हुई थी, उसके बाद डर रिलीज हुई थी 93 में, करण अर्जुन 95 में आई थी, फिर यस बॉस आई थी 97 में, एंड देन बादशाह 99 में रिलीज हुई थी. सो वेल, जिन्होंने यहाँ पर मैसेज किए हैं, आफ्ताब का मैसेज है, फलक का मैसेज है, देन आई हैव हु इज दिस ईयर. मोहम्मद यूसुफ खान का कहना कि बहुत मुश्किल था आफरीन, लेकिन मजा आ गया. सो वेल विद दिस लेट मी प्ले द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू. एंड आई एम प्लेइंग यस बॉस से ये गाना, क्योंकि यस बॉस भी हमने यहाँ पर नाम डाला था. तो अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में आई कॉल इट अ फील गुड वाला गाना है ना. एंजॉय दिस ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, बस होते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6 Mirchi 1.
0: It's hot.
3: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ राइट हियर. मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:04 के तरफ एंड हिमेश इज बैक, वो भी इमरान हाशमी के साथ. यस, ये अगला गाना जो सुना रही हूँ मैं, फीचर्ड ऑन इमरान हाशमी, हिमेश रेशमिया की आवाज में. इट्स गोना टेक यू बैक टू 2000 का एरा, नॉट 90s. इमरान और हिमेश की जोड़ी हमारे 2000 की यादों से जुड़ी हुई है. सो इट्स गोना टेक यू देयर. यू एंजॉय दिस ट्रैक एंड आई एम गोना सी यू इन अ बिट राइटर आफ्टर दिस ट्रैक ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: आई ना याद आपको 2000 के एरा के वो गाने, एक बार इन्होंने आशिक बनाया था हमने हम पे, और अब इन्हें अफसाना बनाया, ये लेकर आए हैं, क्या बात है। और चलिए फटाफट से ना गोल्ड रेट्स पर नजर डालते हैं यहाँ पर। गोल्ड अपडेट, वेल गोल्ड अपडेट ये कहता है दैट 1 ग्राम गोल्ड बाहर द पैम पार इज फॉर 5,566 कतरी रियाल, वेर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2,650 कतरी रियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5,228 कतरी रियाल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16,160 कतरी रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 59,990 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट्स। सोना लेना या ना ले रहा हो, लेकिन भाव पर नजर हमेशा रहनी चाहिए। That too with Alfardan. मैं हूं आफरीन आपके साथ, right here on Mirchi. It's hot.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

झटक, लॉन्डो के दिल पटक पटक, सांसे जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: Mix. Mirci. Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरी चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
5: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
4: हाफ पे बैक मतलब
5: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
4: वाओ किस किस चीज पे
5: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
4: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
5: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Cut, cut.
8: Who that?
7: Zahir.
8: Zahir. Zahir ho.
7: Zahir si baat hai. Main hu. Aur koi nahi.
8: Cut, cut.
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

वेलकम आर सनू एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। हटके वाला गाना सुना है कि नहीं आपको? मतलब कितना साल हो गया था ना ये गाना सुन के, एंड देन यू टोटली इमेजिन्ड हमारे भाईजान डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग। क्रेजी डांस, दोज मूव्स एंड वियर्ड मूव्स सिर्फ ना सल्लू भाई कर सकते हैं। And while talking about Bollywood, let's fast forward and get you today कि आज Bollywood की वो कौन सी मूवी है जो रिलीज होने वाली है this weekend, and I want to make a special mention about it क्योंकि ये मूवी ने एक ऐसी तारीख हमारे जहन में इतनी पक्की कर ली थी जो स्कूल में हमें सिखाया गया था कि बच्चों 2 अक्टूबर होती है गांधी जयंती, लेकिन अजय देवगन ने आके कुछ और ही हमको समझाया कि 2 अक्टूबर को हम वो सत्संग में गए थे, वो पंजिम में गए थे गोवा, एंड माई गॉड हाउ कैन वी नॉट फॉरगेट दृश्यम आई। ठीक है, विजय सालगांवकर और उसकी फैमिली की ये कहानी जो हमें इतने अच्छे से रट गई थी, एंड दृश्यम 1 आई, उसके बाद में दृश्यम 2 आई, एंड नाउ इज द टाइम। मेकर्स ने डेट के साथ जो गेम खेला है ना वो तो ब्रिलियंट है कि अब 2 अक्टूबर को ही वो दृश्यम 3 लेकर आ रहे हैं, एंड दिस टाइम फाइनली इट सीज दृश्यम द कंक्लूजन। एंड अब आई ऑनेस्टली फेल्ट एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम अब ये ज्यादा खींच नहीं रहे ये लोग, लेट्स सी हाउ दे आर एबल टू कंक्लूड इट। बस अब कंक्लूड ही कर दो, इससे ज्यादा हमें नहीं ये सीखना है। बट यस, अजय देवगन इज बैक एज विजय सालगांवकर अलॉन्ग विद तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता एंड मृणाल जाधव। इसमें प्रकाश राज है, एंड दैट्स व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस मूवी। सीरियसली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रकाश राज, और प्रकाश राज के साथ साथ जयदीप अहलावत भी है, सो दिस टाइम आई फील द स्टार कास्ट इज रियली गुड। सो वेल, स्टोरी ऑब्वियस मैं स्पॉइल नहीं करूंगी यहाँ पे, वी ऑल नो, बट विजय ने जो सीक्रेट इतने सालों से प्रोटेक्ट किया है वो फिर डेंजर में है विद अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन क्लोजिंग इन, एंड बिकॉज दिस इज द कंक्लूजन, इस बार सवाल सिर्फ विजय बच जाएगा नहीं है, विजय सालगांवकर की कहानी खत्म कैसी होगी अब हमें ये देखना है। सो वेल, 2nd of October ये रिलीज होने वाली है, हमारे कतर में भी ये रिलीज होगी आई एम श्योर, और कब होगी क्या होगी कल मैं बता दूंगी इसके बारे में, और OTT पर भी क्या आएगा ये सब मैं कल बताऊंगी। फिलहाल बात हो गई है अबाउट विजय सालगांवकर, आर यू एक्साइटेड कि यार कैसे कंक्लूड होता है देखे। ठीक है, फिलहाल केके की आवाज में अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची इज हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जैस्मिन संडलस की जबरदस्त पावर पैक्ड आवाज में ये गाना आपने सुना, साथ देते हुए सतिंदर सरताज, राइटर ऑन मिर्ची। और वक्त हो चला है कि शायर का ख्याल आफरीन की जुबानी सुनाने का, एंड आई जस्ट फील सो अमेजिंगली एस्टोनिश्ड कि भाई कैसे ये शायर और पोएट्स ना इतनी ब्यूटिफुली अपने ख्याल डिपेंड डाउन, एंड इट रियली टचेस योर सोल, है ना। सो चलिए आज की शायरी क्या कहती है आफरीन की, लेट्स सी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, और ये जो है ना ख्याल ये बिल्कुल रियल फैक्ट पे है जिंदगी के, तो अर्ज किया है, अब हर बात पे जवाब देना जरूरी नहीं लगता, अब हर बात पे जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर रिश्ता निभाना भी मजबूरी नहीं लगता, जो कल तक खोने से डर लगता था आज उसे छोड़ने में डर नहीं लगता, शायद बदले नहीं हैं हम, शायद बदले नहीं हैं हम, बस खुद को समझने लगे हैं, जो सुकून छीन ले उसे अपना कहने छोड़ने लगे हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, एंड आई थिंक सो प्रोबेबली दिस इज व्हाट अडल्टिंग टीचेस यू, है ना। साधना सरगम और मुर्तजा कादिर की आवाज में, ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: इन आवर स्कूल टॉयलेट यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था।
3: दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: खटखट,
8: भट्ट
7: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
8: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
7: खटखट, हु दैट?
9: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1।

ज्योतिका, गर्ल यू डिजर्व मोर सॉन्ग्स। यार ये इतना अंडररेटेड गाना है, फुकरे 2 से ये गाना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग व्हिच इज लाइक हाइडिंग समवेयर, बट एवरी टाइम आई लिसन टू दिस ट्रैक आई फील के यार इसे ज्यादा सुनना चाहिए। अच्छा लगता है ना कुछ गाने सुनकर। वेरी गुड मॉर्निंग कहते कहते, बात करते करते, गाने सुनते सुनते यहाँ पर 4 घंटे का सफर जो है मैंने तो तय कर लिया आपके साथ। कितने सारे लोगों के साथ मुलाकात होती है ना, मतलब मैं जब यहाँ बात करती हूँ आई ऑलवेज वंडर कि जिन लोगों को कब तक ये आवाज़ मेरी पहुँचती है वो कितने अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कोई ऑफिस जा रहा होता है, तो कोई अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहा होता है, तो कोई हमारे ड्राइवर भाई होते हैं जो लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं बड़े ही अच्छे से सेफली। एंड सभी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक, ज़रूरी नहीं है कि हर एक गाना सबको पसंद आए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर एक बात सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आवाज़ जो है वो बस याद रह जाए और एक नाम याद रह जाए और एक कनेक्शन बन जाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस वेयर आई एम एंड दिस माइक वेयर आई एम। आई फील कि यार कितने लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है ना। एंड देन योर मैसेजेस हियर, जब हम गेम्स खेलते हैं दैट मेक्स मी इवन मोर हैप्पी। मतलब मेरे लिए ना ये बेस्ट पार्ट इज़ के सुबह के जो दिन की शुरुआत ही होती है वो आप सभी के साथ में होती है, दिस फेवरेट प्लेस हियर इन द स्टूडियो यहाँ पे। सो आई फील कि यार बहुत अच्छी तरीके से एक किक स्टार्ट मिल गई है ना पूरी तरह से मेरे दिन की। आई होप ये जो एनर्जी है ना जो मैं यहाँ से आपसे ही लेती हूँ ऑनेस्टली मैंने आप तक वापस पहुँचाई है। एंड यही कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना, जो आप देने की अच्छाई कोशिश करोगे वो आपके पास वापस कोई ना कोई तरीके से कहीं ना कहीं से ज़रूर पहुँचेगा। सो थैंक यू सो मच जो आप लोग यहाँ पर मैसेज करके, इंटरेक्ट करके या फिर जस्ट ट्यून इन करके इतना प्यार देते हो, थैंक यू। चलिए फिर मैं यहाँ से अलविदा लूँ, इजाजत है, कल आऊंगी डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ यहाँ पर वीकेंड बनाने के लिए। मीनवाइल इतना सोना गाना दे जा रही हूँ ना आपको, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना माइक से दिल तक आफरीन की तरफ से अनमिर्शी थॉट।

0: वलानु मलिक की पावर पैक आवाज़, हेमा सरदेसाई का साथ है, 90s का ये गाना अगर आपकी जिंदगी में यू नो वो पैर को थिरकने में मजबूर ना करे तो फिर क्या ही करे।
1: मिर्ची अंशु
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ एंड टुडे आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अगर आज की तारीख को आप देखने की कोशिश करें सो टुडे इज 30th of September, यानी कि इस महीने को अलविदा कहने की बारी जो है वो आ चुकी है एंड इसके बाद आप और हम मिलकर जब नए महीने का स्वागत करेंगे तो भैया एक दिन बस काम के लिए निकलेंगे, उसके बाद यार महीने के आते ही अगर जिंदगी में वीकेंड आ जाए तो भाई इसे नए महीने का तोहफा ना कहें तो फिर क्या ही कहें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अब से अगर नए साल के इंतज़ार की बात करें तो महज 4 महीने की दूरी पर हैं हम, वक्त क्या रफ्तार की तरह निकल रहा है ना। तो मैं इतना कहना चाहूंगी एक बार फिर से कि जो भी रेजोल्यूशंस साल की बिगनिंग में आपने लिए थे, साल खत्म होते होते वो गिल्ट फैक्टर दिल में ना रह जाए, तो क्यों ना 4 महीने के अभियान में एटलीस्ट कुछ तो पूरा कर लें। तो खुद को तसल्ली देने के लिए दिल में एक बात रहेगी, भैया पूरा ना कर सके कुछ तो किए। उसके बाद एक बार फिर से रेजोल्यूशन लो एंड तोड़ो अभियान जो है आपके और हमारी जिंदगी में शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल जुबिन नौटियाल एंड सुवर्णा तिवारी की आवाज में द विवान, इस फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप तक मैं पहुंचाती हूँ, फीचरिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
1: Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कट कट।
6: Who that?
5: जस्सी।
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी who has come, आंटी जी?
6: कट कट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, Darshan Rawal and Jonita Gandhi ki khubsurat si awaaz and what a lovely track this from the film Ishq Vishq Rebound. Bada hi cute sa pyara sa gaana. Bas itna bata do agar waqt ko dekhne ki koshish kare, bada kamaal hai aapki aur hamari zindagi mein. Mirchi ghadi mein us waqt baj rahe hain 10:19.
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Bas agar waqt ko dekhne ki koshish kare to iska ishaara seedha aapko aapki ghadi ki aur hi lekar ja raha hai. मिर्ची अंशु यार आपको एक दौर याद है, आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले का दौर, या तो मैं यूं कहूँ तकरीबन 8 से 9 साल पहले का ही दौर, जब एक ट्रेंड चल पड़ा था कि जो ड्रेस हमने पहनी है कहीं ना कहीं उसकी मैचिंग की ना सिर्फ ज्वेलरी बल्कि वॉचेस भी मैचिंग की होनी चाहिए. एंड हमारे उस वॉचेस वाले बॉक्स में स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए ना जाने कितनी सारी घड़ियाँ होती थी. नहीं यार, मैं अपने मम्मी के दौर इन ज़माने की बात नहीं कर रही जहाँ पर वो एक काले पट्टे वाली बेल्ट वाली घड़ी जो है ना ज़िंदगी भर बस निकल ही गई. एंड फाइनली लास्ट में अपग्रेड हुआ तो भी मम्मी कहाँ करती थी कि अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास घड़ी है ना. मतलब वो एक घड़ी, और हम जो हैं आज के डेट में 10 घड़ियां भी जो है हमारे लिए कम पड़ने लगी. लेकिन भाई साहब, इस समस्या का समाधान बचकर अगर हमारी जिंदगी में फाइनली किसी ने दस्तक दी, एंट्री मारी, तो वो है स्मार्ट वॉचेस ने. जैसे ही स्मार्ट वॉचेस का एरा आया भाई, हर किसी के अंदर क्रेज हुआ कि चाहे आप ट्रेडिशनल आउटफिट में, वेस्टर्न आउटफिट में, कपड़ा चाहे जो भी है, घड़ी जो है आपके हाथ में वो स्मार्ट वाली ही होनी चाहिए. 3 से 4 साल तक सॉलिड कोहराम इसने भी मचाया, लेकिन फाइनली आज के डेट में फिर से एक बार उन ट्रेडिशनल वॉचेस का जमाना दौर आ गया है जब लोगों को लगता है कि नहीं यार, अपने आउटफिट के हिसाब से अपनी वॉचेस को कहीं ना कहीं मैच करना है. कुल मिलाकर सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है एंड पुराना ट्रेंड जो है एक बार हमारी जिंदगी में लौट कर फिर से आता है. लेकिन चलिए, अगर आपको लगता है कि आप भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां पे आपको वैरायटी ऑफ वॉचेस का क्रेज है, खरीदे ना खरीदे देख जरूर ले, सीधा आपको कहीं पहुंचना है तो उस जगह का नाम है एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहां पर शुरू हो चुका है दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन एंड इट इज गोना रन अंटिल 3rd of October. बिलीव मी, ज्वेलरी एंड वॉचेस का क्या गजब एंड कमाल कलेक्शन है कि भाई देखकर दिल जो है ना खुशी से गदगद हो उठता है. एंड अगर जाएं तो मनीष मल्होत्रा का स्पेशल बूथ जो है वो विजिट करना ना भूलना, जहां पर उनके आइकॉनिक पीसेस आपको देखने को मिलेंगे. एंड क्या पता दिल खरे है तो आप खरीदेंगे और हम जो है मलबार की पहनी फरहाद सईद की आवाज कुरतलन बलोच के साथ, क्यों ना चलिए कोक स्टूडियो वर्जन में एक बार एंट्री एंड डुबकी मारते हैं. गाना पसंद आए मुझे एक थैंक यू मैसेज आप जरूर भेजेंगे 5000 1896. वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
7: जबरदस्त ट्रैक्स,
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, her new and share Vishal ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. What a beautiful song, yaar. Ye gaana jo hai na, mere dil ke behad kareeb hai. Waise koi aur gaana bhi hai jiski koi to jhalak main aapke beech pesh karungi, jo I'm pretty sure aapke dil ke behad kareeb hoga. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते तो मैं हर दिन आ ही जाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत खूब जमपड़ी शोर आपके दिल के बेहद करीब होगा. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते तो मैं हर दिन आ ही जाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, म्यूजिक एक ऐसी

बस मुझे फटाफट से ये बताना है कि ये धुन है तो आखिरकार है किस गाने की, एंड साथ ही ये गाना आपने सुना तो किस फिल्म में सुना। 5000186 5000186 आई ईगरली लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर रिप्लाइज देयर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एन ऑडियो मैसेज इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर एंड मिर्ची अंशु एंड हियर वी गो।

ऑलराइट इतना सुनने के बाद तो अब तक फटाफट से पता चल ही जाना था कि ये मेलोडियस सीधन है, तो आखिरकार किस गाने से है, साथ ही किस फिल्म से है। 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। भाई ये एक ऐसा मैसेज है कि एक बार और सुना दो इसके लिए भी एक बार। चलिए ठीक है, सिंस यू सेड सुना ही देते हैं। अब दोबारा ना सुनाऊंगी, अब आप मुझे अपना सही जवाब सुनाएंगे। मीनवाइल लकी अली एंड राम्या की आवाज में अगला गाना आप तक। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

What a lovely track it is यार, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि अब जो नए आने गाने आने लगे हैं ना कहीं एक बार फिर से वो हमें अर्ली 2000s के एरा में लेकर ज़रूर जा रहे हैं, या तो कहूँ वो स्कूल कॉलेज टाइम के अराउंड 2010 के एरा में ज़रूर लेकर जा रहे हैं। गाने तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये काम आपकी ज़िंदगी में मैं भी एक बार फिर से कर ही दूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक धुन, एंड मैंने आपसे बस यही कहा था आपने मुझे आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि ये धुन है तो है किस गाने के, साथ ही किस फिल्म से है। चलिए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड, इससे पहले कि आपसे कुछ देर में मैं करेक्ट आंसर आप तक पहुंचाऊं, ये धुन मैं आपको फिर से सुनाती हूं। एंड इतना बता दूं, आप में से जितने लोग भी रिप्लाई करेंगे एंड साथ ही अपने ऑडियो के जरिए मुझ तक करेक्ट आंसर पहुंचाएंगे, आप में से किसी एक लकी विनर को आज कुछ बहुत ही स्पेशल मिलने वाला है नसीम डेंटल सेंटर से, एंड इट इज गोइंग टू बी अ फ्री डेंटल स्केलिंग वाउचर। मतलब आपकी मुस्कान जो है वो और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, एंड वो खूबसूरती जो है ना आप औरों की जिंदगी में और अच्छी तरह से बिखेरेंगे, फैलाएंगे। तो बस फटाफट से करेक्ट आंसर भेजें, एंड एज आई मेंशन आई वुड रियली अप्रिशिएट एन ऑडियो बाइट एंड ऑडियो मैसेज फॉर यू टू बी विनिंग द डेंटल स्केलिंग वाउचर फ्रॉम नसीम डेंटल सेंटर। सो हियर यू गो।

0: यार इससे आसान धुन जो है ना वो हो नहीं सकती. मतलब लिटरली इट इज लाइक एट्थ के एग्जाम में मैंने चौथी कक्षा का सवाल पूछा हुआ है. बिकॉज आई वॉन्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. फटाफट से बताएं ये गाना है तो है कौन सा एंड साथ ही किस फिल्म से है. नसीम डेंटल सेंटर का फ्री डेंटल स्केलिंग वाउचर कर रहा है आपका इंतजार. क्विकली बीच में कुछ कोई बोल रहा है जरा सुनाऊं.
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: अर्शद वारसे आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की. प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे. नहीं
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए. वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है. पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा.
4: चार फिल्में उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म. मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ.
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: हॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Well, Sachin Tindan ki Power Pack Awaaz, and what a lovely track it is from the film Malang featuring Disha Patani and Aditya Roy Kapoor. Ye Power Pack gana to maine aapko suna diya, lekin jis khubsurat se gaane ki baat hui thi, uski daastan complete kar li jaye. Mirchi Anshu. वल इतना बता दूं कि आज जो है मैंने भरपूर कोशिश कर रखी है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी मुस्कान को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने का वो एक पहल जो है ना हम ले आए. नहीं, वैसे मेरी बातें सुनने के बाद ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट आप जो है मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मेरे बारे में सोच के आप और ज़्यादा खुश होने लगते हैं. ये बात तो मुझे पता है, लेकिन क्यों ना ये सारे के सारे काम में कारनामे में कुछ तो इंक्रीमेंट हो ही जाए. तो बस अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक धुन, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है कौन गाना. वेरी इजी इट वॉज, एंड साथ ही एक किस फिल्म से है. एंड मैंने कहा था कि जो करेक्ट आंसर देगा उनमें से कोई एक शख्स आज हमारे साथ जीतने वाले हैं नसीम डेंटल सेंटर की तरफ से फ्री डेंटल स्केलिंग वाउचर. वो चमचमाते हुए दांत एंड वो प्यारी सी मुस्कान. तो चले देखे ये धुन कौन सी थी एंड वो कौन लकी शख्स है जो आज ये वाउचर जीत चुके हैं. सो हियर वी गो. मतलब अगर ये ना जाना ये ना पहचाना तो फिर क्या ही जाना माना. सच कह रही हूँ, लेकिन कोई तो है जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसे पहचाना है.
1: हाय अंशु, गुड मॉर्निंग.

0: वी जब भी मेट, माय नेम इज मजहर, थैंक यू।
1: सच कह रही हूँ मजहर, बिना डेंटल स्केलिंग के ना आपने मेरी जिंदगी में इतनी प्यारी सी मुस्कान लाई। द वे यू सैंग, वी जस्ट लव्ड इट। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस मजहर। वेल, आप जीतते हैं नसीम डेंटल सेंटर की तरफ से फ्री डेंटल स्केलिंग वाउचर। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा, ये गाना है साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब वी मेट, जिसे डायरेक्ट किया इम्तियाज अली साहब ने, फीचरिंग शाहिद कपूर एंड द वेरी गॉर्जियस करीना कपूर। इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया मोहित चौहान ने। एंड साथ ही अगर म्यूजिक की बात करें, इट वॉज बाय प्रीतम, लेकिन सबसे प्यारे इस गाने में अगर कुछ रहे तो वो है उसके अल्फाज, जो कि रहे इरशाद कामिल के। चलिए जी, अब आप सबकी जिंदगी में सौगात के तौर पे ये गाना तो मैं ले आऊं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

89.6 Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म मिर्जापुर। सच कह रही हूँ, मतलब मिर्जापुर द मूवी। इस फिल्म की सक्सेस में कहीं ना कहीं अगर किसी का हाथ है तो इस गाने का जरूर याद है। लेकिन जब उसकी धुन सुनी मैंने तो कोई तो खास बात है जो उस वक्त मुझे याद आई और जरूर आई।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, ये वो दौर की बात है जब कहीं ना कहीं घर में कोई इवेंट, कोई फंक्शन हुआ करता था एंड बस उस दौर में ऐसे कोई गाने बजे करते थे जो ऐसा लगता था कि भाई एक अलग सा माहौल है। मतलब घर पे वो फेस्टिविटीज का पूरा ओकेजन है, यू नो, सबके अपनों का साथ आना, वो पास आना। यार ये यादें भी कितनी खूबसूरत चीज़ होती है ना। कभी बचपन की कोई शरारत, कभी दोस्त के साथ बिताई वो बेफिक्री वाली शाम, कभी मम्मी के हाथ का वो खाना, कभी किसी अपने की वो हंसी, कोई सफर, कोई जगह, और कभी किसी बेहद खास इंसान के साथ बिताया वो बस एक वो मामूली सा पल जो बाद में हमारी जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत और कीमती याद बन जाए। यार अजीब बात है ना कि जब हम उन लम्हों को जी रहे होते हैं तब हमें कहाँ पता होता है कि एक दिन यही छोटी छोटी बातें हमें इतनी याद आएंगी। शायद इसलिए तो जिंदगी सिर्फ उन सालों का नाम नहीं जो हमने गुजारे हैं, यार जिंदगी तो उन लम्हों का नाम है जो गुजर कर भी हमेशा हमारे अंदर कहीं ठहर सी गई। और इसी बात पे ना मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ कि कुछ लम्हे गुजर कर भी गुजरते नहीं, कुछ चेहरे दूर होकर भी बिछड़ते नहीं, यार वक्त चाहे कितने ही पन्ने क्यों ना पलटते रहे, कुछ यादों के रंग कभी उतरते नहीं। तो मेरी बात सुनने के बाद अगर किसी की याद आई तो क्यों ना उसे एक फोन कॉल या मैसेज ही हो जाए। और अगर मेरी याद आई तो मेरा नंबर 5000 1896, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए सुनिधि चौहान महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म यादों से ये गाना ना सुना तो क्या ही सुना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Burga, burga. La vieja la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप मुर्गा बन मानिए काम।
3: अच्छा भैया आप मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

Well, Kavita Seth and Kanishka Seth की ये खूबसूरत सी आवाज़ and what a lovely track it is, ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये खास बात क्या आपने इस पे नजर डाली?

हिम इतफा अरे ना ना ना ना मेरी ये आवाज पे जरा कम ध्यान दें, जो उसके पीछे छुपे जज्बात है ना उस पे ज्यादा ध्यान दें. वेल लिटरली इन दिनों जब मैं सुबह सुबह वॉक करने निकली हूँ या मैं जब शाम को निकल रही हूँ, एक्चुअल में फील होने लगा है कि मौसम जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो चुका है. मुझे पता नहीं ये बात आपने अभी तक महसूस किया ना कि, लेकिन मैंने 101% इसे रियलाइज़ किया एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड. लेकिन जहाँ पे एक तरफ मौसम का जादू आप और हम मिलकर बहुत खूबसूरत तरह से जी रहे हैं, वहीं दूसरी बात आपको ये भी बता दूँ कि कतर में बहुत कुछ एक्साइटिंग है जो अब होने वाला है, लाइंड अप है, ये सब कुछ होगा. लेकिन अभी इस वक्त क्यों ना कुछ पल ऊपर वाले की इबादत में आप और हम बिता ही दें.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट, अकबर।
6: अकबर हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हु दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, Vishal Mishra ki khubsurat si awaaz, Sachin Jigar ki composition, and what a lovely track it is, yaar. Kabhi kabhi lagta hai ki koi gaana itna khubsurat kaise ho sakta hai. Lekin sach kahun, mujhe pata hai ki ye jo alfaaz aur ye jo jazbaat hain, ye aapke hain mere liye. To bas aapke behalf mein maine khud ke liye baja li. Aur kya? Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu. देखिए, इससे अगर इस वक्त खूबसूरती की बात करें तो इसमें चार चांद और तड़का लगाने की बारी जो है ना, वो आ ही चली है. देखिए, जब भी एक लड़की सजती है, सवरती है, तो माना कि उसकी आँखों का जो वो काजल है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है. वो जब सलीकी से खूबसूरत तरह से उतने प्यारे गहनों को जब वो पहनती है, तो ऐसा लगता है खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई. वो माथे की वो छोटी सी बिंदी कहूँ, या वो प्यारी सी खूबसूरत सी साड़ी कहूँ, या कोई भी आउटफिट या अटायर जो उसे काफ़ी कम्फर्टेबल लगता है, हाय, खूबसूरती को बढ़ाने के बस यही तो तौर तरीके होते हैं. लेकिन हाँ, सजना सवरना जहाँ पर हम खुद के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो अपने लोग हैं, जब हमारी खूबसूरती को निहारते हैं या तो फिर उसकी तारीफ करते हैं ना, तो खुशी जो है वो दुगनी हो ही जाती है. तो चलिए एक काम करें, तारीफ करने की शुरुआत जो है ना, हम यहाँ से करते हैं कि क्यों ना भाई साहब, जब अलफरदान एक्सचेंज में अच्छे खासे गोल्ड रेट्स हैं, तो सबसे पहले सोने की परचेसिंग आप और हम मिलकर कर ही ले. गोल्ड अपडेट. Well, इतना बता दूं कि आज आप गोल्ड परचेसिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड ईडी फॉर्चुना बारस टुडे प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 568. वही अगर 5 ग्राम्स की बात करूं, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 2661. 10 ग्राम्स की बात करें, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 5252. एंड वही अगर मैं 1 आउंस की बात करूं, सो इट इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 16234. अगर अच्छी तगड़ी लंबी खरीदी करना है तो तैयार हो जाए, 10 तोला टुडे इज प्राइस्ड एट कतरी रियाल्स 60264. तो बस खूबसूरती को निहारने का काम बाद में कर ही लेंगे, अभी फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. अलफरदान एक्सचेंज की तरफ से गोल्ड रेट हमने आपके बीच पेश किया.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi, it's hot. हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
1: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
0: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot. Khat khat.
2: Kaun hai?
0: Ishant.
2: Ishant kaun?
0: Ishant Gadadhari Bhim. Ishant.
2: Khat khat. Who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

Well, Nikhil D'Souza की खूबसूरत सी आवाज and what a lovely track it is. Believe me, अगर energizer की बात करूँ, एक ऐसे गाने की बात करूँ जो मेरी जिंदगी में ना किक का काम करता है, तो भाई ये वो गाना जरूर है. मिर्ची अंशु. नाउ ये बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन इस बेसिक से डिफरेंस ने ना पूरा का पूरा कारनामा यहाँ पे बदल के रखा है, पूरे खेल का हेर फेर कर दिया है. अगर दो मैं एक ऐसी डिश की बात करूँ, दो स्वीट डिश की बात करूँ, जिसने ना ही सिर्फ हमारी ज़िंदगी में गज़ब की मिठास घोली हुई है, लेकिन हाय कलेजे को ठंडक तृप्ति देने का काम भी ना बड़ी खूबसूरती से की है, तो भारत से आता ये दो मीठा, जो कि सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान की भी आन बान शान है, कहीं ना कहीं श्रीलंका बांग्लादेश में भी कंज्यूम की जाती है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रसगुल्ला, या तो कह ले रसगुल्ला, एंड साथ ही गुलाब जामुन. मतलब कोई ना कोई इसके प्रेमी कहीं ना भाई तुम मीठे के नाम पे ना फिर धब्बा धब्बा कलंग ना कहेंगे, मैं शब्द अच्छा नहीं लगता. चलिए तो आज एक क्वेश्चन जो है ये दो स्वीट डिश के बेस पे मैं आपसे पूछती हूँ. देखिए दोनों जो है राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, यू नो आई एम लिटरली टेम्पटिंग टू ईट जैसे जैसे मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, पॉइंट नंबर टू, दोनों को शुगरी सिरप में डिप किया जाता है. इन दोनों को बनाने का तरीका, मेथड, पैटर्न भी काफ़ी कुछ सेम होता है, लेकिन एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो अलग है, और वही बेसिक इंग्रेडिएंट ने दोनों के कलर, टेस्ट, फ्लेवर सबको बिल्कुल जुदा, सबको बिल्कुल अलग कर दिया है. तो चलिए मेरा क्वेश्चन आज यहाँ पे ये है कि अगर मैं गुलाब जामुन की बात करूँ, तो बेसिकली गुलाब जामुन बनता है मावे से, यानी कि खोए से, ठीक है, जो कि दूध से ही निकाला जाता है. लेकिन अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो वो किसी और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है, इसका बेस मावा यानी कि खोआ नहीं है. आप मुझे आज ये बताएंगे कि रसगुल्ले का बेस इंग्रेडिएंट आखिरकार क्या होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शुगर सिरप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गुलाब जल, इलायची वगैरह नहीं चाहिए, वो मेन इंग्रेडिएंट क्या है जो रसगुल्ले को रसगुल्ला बनाता है. 5000 1896 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु. मीनवायर जावेद अली की आवाज़, कीर्ति सांगतिया का साथ, फिल्म का नाम रांझणा ने, अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग ही रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: साच भट्ट की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज विद सुबोध शर्मा भाई, एक बार फिर से ये गाना मैजिकल एक्सपीरियंस देने के लिए हमारी जिंदगी में आ चुका है। लेकिन जिस मैजिक को मैंने आपकी जिंदगी में स्प्रेड किया था, जरा उसकी कहानी पूरी कर लूं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार मान गई, मतलब आप भी ना बिल्कुल मेरी तरह पूरी तरह से चटोरे हैं। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच दो ऐसी डिशेस की दास्तां पेश की थी जो हमारी जिंदगी में मिठास को खूबसूरत तरह से लाने का बहुत ही प्यारा काम करती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रसगुल्ला एंड सेकेंड डिश था गुलाब जामुन। ये एक ऐसी मिठाई है जो एशियंस के दिल में पूरी तरह से घर करती है, हर घर घर में बनाई जाती है। एंड यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर इन दोनों को देखने की कोशिश करें, रंग इनका अलग है लेकिन बनावट सेम है, मेन इंग्रेडिएंट जो है जिस पदार्थ से बनता है वो भी सेम है, दोनों की डोरें डुबकी लगाती हैं चाशनी में, लेकिन वो ऐसा बेस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से जुदा कर देता है। मैंने आपको बताया था कि अगर गुलाब जामुन की बात करें तो ये बनता है मावे से, यानी कि खोए से, जो कि दूध को रढ़ा रढ़ा के बनाया जाता है, यू नो, एंड हाय क्या लजीज इसका फिर इवेंचुअली फ्लेवर आता है। लेकिन अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो वो ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो दूध से ही बनता है लेकिन पूरी तरह से अलग इन जुदा हो जाता है? तो वेल, यूसुफ भाई ने कहा, मोहम्मद ने कहा, रुकमनी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने और भी रिप्लाई किया है। अगर आप लोग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेजते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बट कोई ना। वेल, वाजिद ने भी गाया, उन्होंने कहा मेरा नाम क्यों नहीं लिया, अभी भी मैसेज किया। सॉरी यार, मैं शुरू के 4-5 लोगों का बस नाम ले पाई, द लिस्ट इज लॉन्ग, बिकॉज वेल अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो उसे दूध को रढ़ा के नहीं फाड़ कर जो छेना बनाया जाता है, फाइनली छेने को मथने के बाद अगर हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है बहुत सॉलिड तरह से तो वो है रसगुल्ला। सो गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला दोनों ही दूध से ही बनते हैं, एक दूध को रढ़ा रढ़ा के गुलाब जामुन का फॉर्म लेता है, दूसरा जो है दूध को फाड़ने के बाद छेना बनने के बाद रसगुल्ले का फॉर्म लेता है। फेस्टिव सीज़न हमारी ज़िंदगी में आ ही रहा है तो सोचने क्यों ना मिठाइयों की बात जो है वो हो ही जाए। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं गुलाब जामुन एंड रसगुल्ले की बात करूँ तो कतर में मुझे कहाँ जाना होगा जहाँ मुझे बेस्ट रसगुल्ला एंड गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिलेगा? 5000-1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल श्रेया घोषाल ने निहाल तराउ की आवाज में राशि प्रोडक्शंस की अगली फिल्म का टाइटल ट्रैक आपके लिए एंजॉय। बंदे का नाम अंशु।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं
4: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew! So much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
6: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning, your jewelry purchases Malabar Gold and Diamonds kafi hai ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak then if the price increases at the time of purchase aap pa sakte hain the booked rate aur agar gold price drop hoti hai you get the lower rate hai na enough reasons to start the celebrations already to aaj hi apna price locked gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds
7: खट खट
8: कौन है
7: अज्जू
8: अज्जू कौन
7: अज्जू ना आए बालमा सावन बीता जाए होए
8: खट खट हु दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

Well, KK को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें जो है ना अपनी आवाज और अपने गानों से प्यार वो कराए और कैसे कराए। मिर्ची अंशु यार सच कह रही हूँ, मतलब जितनी जद्दोजहद मैंने इस बात की कतर में देखी है ना, शायद ही कहीं और देखी हो, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से मुझे रहने का मौका सिर्फ दो ही देशों में मिला है, यानी कि भारत और दोहा यानी कि कतर। वेल, इस वक्त सबसे बड़े अभियान की बात करें जो अभी से ना जाने कितने स्कूलों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो वो है आने वाले टर्म, आने वाले टेन्योर के एडमिशन्स के लिए। एंड अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए ना जाने हम कितनी जगह भटक्का मारते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी अभियान का हम हिस्सा बनते हैं। एंड फाइनली जब अपने मन चाहे या दिल चाहे स्कूल में कतर में एडमिशन मिल जाए, इतना समझ लो कि बच्चे के साथ साथ माँ बाप ने पहली परीक्षा जो है 101% पास कर ही ली। लेकिन जितने भी बच्चे इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले टेन्योर एंड टर्म के लिए आप जो है पूरी तरह से एडमिशन के प्रोसेस में लग चुके हैं और अभी से इसकी कोशिशें जारी हैं, तो इतना समझ जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने एक नया प्रोटोकॉल जो है, एक नई रेगुलेटरी लागू की है एक नए रिफॉर्म के चलते, जहां पर प्राइवेट स्कूल्स में तकरीबन 6,883 न्यू सीट्स ऐड की जाएंगी अक्रॉस 46 स्कूल्स। Now this is going to be phenomenal. भाई साहब, तकरीबन 7,000 सीट्स का ऐड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, एक बार फिर से आप जो है इस अभियान पे लगे, लगे कि बच्चे का एडमिशन हो गया, मतलब आपने पहली परीक्षा पास कर ली है, उसके बाद आपके घर में मिलके पार्टी करें, क्या कहती पब्लिक। उदित नारायण की आवाज, अलका याग्निक के साथ मिशन कश्मीर फिल्म का नाम, एंड मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
8: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

यार कुछ गाने होते हैं जो एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सुकून लेकर आते हैं। एंड अभी जो आपने गाना सुना रजत सिंह एंड शिल्पा राव की आवाज़ में फीचरिंग करीना कपूर एंड आमिर खान, सच कहूँ यार फिल्म लाल सिंह चिट्ठा से जब जब मुझे सुकून की तलब होती है ना, मैं ये गाना लूप में सुनती हूँ। पता है मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर एक गाने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। कोई गाना आपको शायद मोटिवेट करता है, कोई गाना आपके अंदर एक अलग इग्निशन लेकर आता है, किसी गाने से आप इंस्टेंट लिंक या कनेक्ट कर पाते हैं, कोई गाना जिंदगी के उन पुराने पता है मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर एक गाने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। कोई गाना आपको शायद मोटिवेट करता है, कोई गाना आपके अंदर एक अलग इग्निशन लेकर आता है, किसी गाने से आप इंस्टेंट लिंक या कनेक्ट कर पाते हैं।

कितनी शरारतें हमने की, कितनी खूबसूरत से अपनी ज़िंदगी को बिताया कि यार आज भी जब उन लम्हों को याद करने की हम कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि ये कोई तो मामूली सा पल था, लेकिन कब हमारी ज़िंदगी में इतनी कीमती याद बन गया ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अजीब बात यह है ना कि जब हम उन लम्हों को जी रहे होते हैं तब हमें कहाँ पता होता है कि ये छोटी छोटी बातें कभी हमारी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत सी याद बन जाएंगी। शायद इसीलिए ज़िंदगी सिर्फ उन सालों का नाम नहीं जो हमने गुजारे, ज़िंदगी तो उन लम्हों को जीने का नाम है जो गुजर कर आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस ठहर सी गई। बस उन्हीं यादों के नाम मैंने कुछ लिखा, आपको सुनाती हूँ कि कुछ लम्हे गुजर कर भी गुजरते नहीं, कुछ चेहरे दूर होकर भी बिछड़ते नहीं, वक्त चाहे कितने भी पन्ने पलट क्यों ना ले, कुछ यादों के रंग कभी उतरते नहीं। अगर ये बात अच्छी लगी, शायरी पसंद आई तो भाई एक थम्स अप या थैंक यू मैसेज तो बनता है 5001896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज में अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गाना आप तक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: तुषार कपूर, आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
1: I don't have to mouth those.
2: Sorry, bro. Sorry.
1: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन, मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
0: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी franchise में lines ना मिले. सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot. Bollywood Boldal.
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot. अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ. डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन.
4: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स. संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से.
3: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ. डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड. तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Whenever the singer Shilpa Rao ki power pack awaaz and what a lovely track it is. Ye गजब का गाना तो मैंने आपको सुना दिया. क्या ना, जब भूख लग रही होती है तो थोड़े से एनर्जाइजर की और ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना ये एनर्जी सिर्फ मैं अपने अंदर नहीं आप तक भी ट्रांसफ़र कर ही दूँ. वेल, इतनी सारी बातें हमने की एंड सच कहूँ आज वो दिन है जब फाइनली सितंबर के इस खूबसूरत से महीने को आप और हम मिलकर अलविदा कहने जा रहे हैं. कल से एक नए महीने की शुरुआत होगी, एक नए डिटर्मिनेशन के साथ फिर से कुछ नया करने की कोशिश होगी. यार, जब जब दिल में एक ख्वाहिश आए, ख्याल आए ना कि कुछ तो नया करना आया, लेकिन उसके लिए खास दिन की जरूरत है, तो याद रखना कि जिंदगी नई, जिंदगी जीने का मौका तो हमें हर दिन देती है यार. हर दिन जिंदगी में एक नया तोहफा, उपहार, एक नया दिन ही लेकर आती है. मरता इंसान सिर्फ एक बार है, तो बस कल तो मौका भी है, दस्तूर भी. अगर एक्स्ट्रा मोटिवेशन या अच्छे एक्स्ट्रा दिन की जरूरत थी तो कल है 1st of October, न्यू मंथ, न्यू बिगनिंग. सो लेट्स राइज एंड शाइन. चलिए, इसी बात के साथ अब वक्त हो चला है कि मैं चलूँ. मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. भाई साहब, कल के दिन वीकेंड को भी जो वेलकम करना है मिलके करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई तो हेल्पलाइन है जिसकी याद आ गई, जरा सुनाऊं. वस्सलामा हबीबी.
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन.
2: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
1: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं.
2: Oh, no.
1: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं. बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
2: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा. जा, कुत्ते ना हो.
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हिंदी सिनेमा की पहली बैट कॉम
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। पैट कॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर। एंड भाई साहब क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाई आकाश कौशिक, इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा। एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त। और इस चक्कर में जो ह्यूमन क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी। बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: हेलो ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई।
4: हेलो क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी।
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी।
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी।
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी। आपको मालूम है आपने क्या किया है?
4: मैंने क्या किया था?
3: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है। बेवकूफी की बात कर रही है।
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे।
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम। आपका
4: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई।
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप। आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
4: नहीं मत सुने। और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
3: होगा आपके कारण से। हंसा मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी लगती है। आप बहस करने जा रही है मेरे से?
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
4: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
4: तो ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जे जे जे
4: यार, आप लोग किसी दिन ना मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरे मुनु, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या तालुक यार।
0: अरे कहावत है यार।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई इस फिल्म की एडवांस बुकिंग तो ताबड़तोड़ चलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली दृश्यम 3 बाबू मोशाय, जिसके एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये फिल्म एक हिस्टोरिक 50-60 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही है। माइंड यू, अभी तक इस मूवी की 90,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, विच एक्चुअली प्रूव्स दैट विजय सलगांवकर और उनके परिवार की ये जो कहानी है वो लोगों को काफी इंट्रीग करती आ रही है। रुपीज 297.52 करोड़ का बिजनेस एंड काउंटिंग, मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश मूवी की, जिसने डे 52 पे अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में रुपीज 1.61 करोड़ ऐड करते हुए अपनी कमाई के नंबर को बढ़ा दिया है एट रुपीज 7.52 करोड़, एंड ये है रिकॉर्ड फॉर द 8th वीकेंड ऑफ द मूवी एट द बॉक्स ऑफिस। नो वंडर बहुत जल्द ये फिल्म 300 करोड़ मार्क भी पूरा कर लेगी। रवि किशन की सोलो लेड हिंदी फिल्म, जिसमें भगवान उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ये एक क्लीन फैमिली ड्रामा होने वाली है विद जोक्स, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं महावीर जैन, जिसका बैकड्रॉप है स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमित आर्यन। मूवी के बारे में बाकी की डिटेल्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को करो साइड लाइन और मेरे साथ बॉलीवुड गेम में करो शाइन।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड लाइक आई ऑलवेज से, हम हिंदुस्तानी जो है ना, उनके लिए एंटरटेनमेंट इज द कोर ऑफ आर लाइफस्टाइल। तो ऐसे में बॉलीवुड गेम खेलना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो एक काम कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए एंड देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति, वहां मेरे DMs में स्लाइड इन करके अपना फोन नंबर मुझे भेजिए। आई विल गिव यू अ कॉल एंड वील गेट गोइंग विद द गेम। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी मैसेज कर रखा है, तो सबसे पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है वीरेश अग्रवाल जी। सो आर यू रेडी टू play this game, sir?
3: अभी लेकिन easy please।
0: बिल्कुल बिल्कुल easy होगा। Your first question is, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ये किस फिल्म का डायलॉग है?
3: शोले।
0: शोले के लंबे वाले हीरो का नाम क्या है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन को किस फिल्म में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था?
3: डॉन।
0: ग्रेट। डॉन के रीमेक में लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की किस फिल्म में उनको फेटल डिजीज होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं? कल होना हो की लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: प्रीति
0: जिंटा की किस फिल्म में एलियन आता है?
3: जादू। अरे कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया के सीक्वल का नाम?
3: क्रिश।
0: क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, यहाँ अटक गए आप। बट कोई बात नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला आपने, इसके लिए मैं आपको जरूर से बनाना चाहूंगी मिर्ची फिल्मची।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, आप अगर आगे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, मेरे इंस्टाग्राम ID पे जाइए और अपना नंबर मुझे भेजिए। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: क्या बनना चाहोगे मिर्ची फिल्म ची?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो हर रोज की बात ही आज भी मैं ढूंढ रही हूँ एक ऐसा फिल्मची जो मेरे साथ खेलेगा एक बॉलीवुड गेम और फिर उसको मिलेगा ये टैग इफ एट ऑल ही और शी प्लेज द गेम वेल। सो ऑलरेडी इस गेम का एक राउंड हो चुका है जिसमें वीरेश अग्रवाल गॉट स्टक एट अ पॉइंट जहां पे उन्होंने जवाब नहीं दिया ऑफ द क्वेश्चन कि भाई क्रिश मूवी में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है। तो इसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ हैं राजीव शर्मा। तो सर आपको इसका जवाब पता है?
3: ऋतिक रोशन की
0: ऋतिक रोशन की मूवी जिसमें वो चोर बनते हैं
3: धूम टू।
0: धूम टू में लंबे वाले पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है?
3: लंबे वाले पुलिस ऑफिसर का नाम तो वो है अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की मूवी जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ नजर आई है?
3: रणबीर कपूर के साथ नजर आई है दिल है मुश्किल।
0: ए दिल है मुश्किल में किसको कैंसर हो जाता है?
3: जो होता है ये तो अनुष्का शर्मा को होता है।
0: अनुष्का शर्मा की मूवी जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है?
3: अरे ये तो रणवीर सिंह के साथ है ना शादी मुबारक टेज में वो।
0: कौन सी
3: शादी मुबारक? शादी मुबारक नाम है, क्या नाम है?
0: शादी मुबारक उसका नाम पहले होने वाला था लेकिन फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। बट कोई नहीं, इतना अच्छा जो गेम खेला है आपको भी मैं बनाना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: चलो यार जवाब मैं बता देती हूँ। सो अनुष्का शर्मा की फिल्म जिसमें वो वेडिंग प्लानर बनी है इज नन अदर देन बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात। वेल अपने इस गेम का सिलसिला कल फिर से जारी रखूंगी बट अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग राइटेड ऑन मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
5: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
4: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
6: खट खट,
7: हू देयर,
6: हू आर यू,
7: हू आर यू, हू,
6: अरे हू आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
7: खट खट, हू देयर,
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: इस चीज के बिना तो हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल इनकम्प्लीट है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, फिल्मों में आने वाले गानों की बात हो रही है जिसके बिना हमारा भी मन नहीं लगता। बल आज अचानक से गानों की बात इसलिए क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं इन दी इंडस्ट्री जो फ्लॉप हुई हैं, बिग लेवल पे फ्लॉप हुई हैं, बट उसका जो साउंड ट्रैक रहा है दैट वॉज जस्ट अ ट्रीट टू एवरीबडी आउट देयर। तो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट निकाली है जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट द मूवी करीब, उसके बाद हम बात करेंगे झनकार बीट्स के बारे में, देन वील मूव ऑन टू झूम बराबर झूम, फिर आएंगे अनवर के पास और फिर यादें। तो चलो लिस्ट की शुरुआत करते हैं 1998 में रिलीज हुई फिल्म करीब के साथ, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में शबाना रजा और बॉबी देओल लीड रोल में थे। भाई ये फिल्म लिटरली उस टाइम के ऑडियंस को समझ में भी नहीं आ पाई थी क्योंकि जिस लेवल की लव स्टोरीज चल रही थी उस वक्त, ये मूवी एकदम लीक से हटके थी, इसलिए ये एक फ्लॉप साबित हुई। बट भाई साहब, मूवी में अनु मलिक का साउंड ट्रैक, ओ हो, एकदम से अनफॉरगेटेबल म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं ये कभी कभी। और स्पेसिफिकली इस फिल्म के कुछ गाने लाइक चुरा लो ना दिल मेरा सनम, या फिर चोरी चोरी जब नजरें मिली, ट्रांसपोर्ट हो जाता है इंसान किसी दूसरी दुनिया में। तो अगर आपके पास अच्छे गानों वाली लिस्ट है तो उसमें इस मूवी के एल्बम को ऐड कर सकते हो। मीनवाइल यहाँ मिर्ची पे आगे आने वाले गाने एंजॉय कर लो, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ट्यून्ड विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Energy, burga. Hello?
2: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: say it can make or break a film.
1: Shruti, Shruti,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Well, बाबू मोशाय, फिल्मों में गानों की जो अहमियत होती है वो एक इंडियन ही समझ सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसके बिना बिल्कुल अधूरी है यार. हाँ ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए गाने जरूरी नहीं होते, फोर्स फिटेड होते हैं, बट यार इन जनरल गानों के बिना तो मूवीज इमेजिन ही नहीं कर सकते हम. इसीलिए आज पांच को पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों की बात चल रही है जो बॉक्स ऑफिस पे तो फ्लॉप साबित हुई, बट इसका साउंड ट्रैक हैपन टू बी अ सुपर डुपर हिट. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म करीब, जो 1998 में रिलीज हुई थी. अब नंबर दो पे बात करते हैं 2003 में रिलीज हुई फिल्म झनकार बीट्स के बारे में, जिसे सुजॉय घोष ने डायरेक्ट किया था. बाकी नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन विशाल शेखर के अमेजिंग डुओ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसी फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया था भाई, which was an absolute delightful tribute to Pancham Da as well. भाई इस फिल्म के गाने लाइक सुनो ना या फिर तू आशिकी है, कुछ ऐसी मेलोडीज हैं जिनको हम शायद अपने सपने में भी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन गानों ने हमारे दिल में अपनी जगह बनाई है यार. तो चलो अब इसी प्यार को जरा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं नंबर तीन पे फिल्म झूम बराबर झूम की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाई शाद अली, जिसमें बहुत ही अमेजिंग एंसेंबल ऑफ स्टार कास्ट थे लाइक अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, बॉबी देओल, लारा दत्ता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काजल लगाए हुए, बोहेमियन हैट पहने हुए अमिताभ बच्चन सर, बोले तो हमारे बिग बी. बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कुछ खास काम नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे. लेकिन फिल्म का म्यूजिक भैया ओहो, शंकर एहसान लॉय ने तो आग ही लगा दी. अब वो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर बोलना हल्के हल्के या फिर टिकट टू हॉलीवुड या फिर किस ऑफ लव, किस ऑफ लव, ऑनेस्टली मुझे इस फिल्म के हर गाने रटे हुए हैं. Anyway, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी. मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: अगर इन फिल्मों के गाने नहीं होते ना तो शायद इनको कोई याद ही ना करता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, उसमें जो गाने, जो साउंड ट्रैक होता है, दैट इज रियली रियली रियली रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से या तो मूवी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है या फिर गुड़गुड़ गोते खाती है। बट हाँ, ऑन अ कॉन्ट्ररी, देयर हैव बीन फिल्म्स जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट उनके साउंड ट्रैक्स वर सुपर डुपर हिट। इसलिए आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी करीब, नंबर दो पे हमने झनकार बीट्स की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट झूम बराबर, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, नंबर चार पे अब बात करते हैं फिल्म अनवर की, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय मनीष झा। वेल, इस फिल्म में सिद्धार्थ कोयराला और नौहीद साइरसी लीड रोल्स में थे, एंड ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताती हूँ, इस फिल्म का प्लॉट मुझे तो ठीक ठीक अच्छा अच्छा लगा था, काफी सही ट्रीटमेंट था, बट उससे भी ज्यादा चुम्मेश्वरी वॉज द एल्बम यार। अब वो रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे ओहो हो हो हो, या फिर शिल्पा राव की आवाज में तुसे नैना लागे पिया सावरे ओहो हो, अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ मैं कसम से। एनीवे, इस मूवी से आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे अब बात करते हैं फिल्म यादें की, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था, एंड इट रिलीज इन द ईयर 2001। बाकी फिल्म में म्यूजिक था अनु मलिक का, एंड भाई साहब अगर प्रॉपर मूवी की बात करें तो इट वॉज अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर, बट मूवी का साउंड ट्रैक वॉज अल्टीमेट गजब का ओ हो टाइप्स। अब वो फिल्म का टाइटल ट्रैक हो या फिर ए ली रे ली या फिर जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले भाई साहब, तभी मैं कहती हूँ हम इंडियंस ना किसी फिल्म को बिना गानों के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर वो फिल्म एक कमर्शियल मूवी हो तो। बाकी अगर आपको मेरी इस लिस्ट में कुछ और एडिशन करना हो देन फील फ्री टू डू दैट यार, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। खट खट।
6: Who that?
5: अगर कर।
6: अगर कर who?
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
6: खट खट। Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग तो ताबड़तोड़ चलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली दृश्यम 3 बाबूमोशाय, जिसके एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये फिल्म एक हिस्टोरिक 50-60 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही है। माइंड यू, अभी तक इस मूवी की 90,000 से भी ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, विच एक्चुअली प्रूव्स दैट विजय सलगांवकर और उनके परिवार की ये जो कहानी है वो लोगों को काफी इंट्रीग करती आ रही है। ₹297.52 करोड़ का बिजनेस एंड काउंटिंग, मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश मूवी की, जिसने डे 52 पे अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में ₹1.61 करोड़ ऐड करते हुए अपनी कमाई के नंबर को बढ़ा दिया है एट ₹7.52 करोड़, एंड ये है रिकॉर्ड फॉर द 8th वीकेंड ऑफ द मूवी एट द बॉक्स ऑफिस। नो वंडर बहुत जल्द ये फिल्म 300 करोड़ मार्क भी पूरा कर लेगी। रवि किशन की सोलो लेड हिंदी फिल्म, जिसमें भगवान उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और ये एक क्लीन फैमिली ड्रामा होने वाली है विद जोक्स, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं महावीर जैन, जिसका बैकड्रॉप है स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमित आर्यन। मूवी के बारे में बाकी की डिटेल्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: भूमि पेटनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ.
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
3: So, दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।
2: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: कुछ गानों की अपनी ही किस्मत होती है। हम दिल दे चुके सनम, नहीं नहीं इस गाने की नहीं, बट इस फिल्म की जरूर से बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी 1999 में, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और इस फिल्म का ये एपिक ट्रैक तो डेफिनेटली याद होगा आपको।
1: तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार।
0: सो ये गाना ना इस मूवी के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। यस, बेसिकली लिरिसिस्ट महबूब ने ये कहानी सुनाई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया कि भाई वो और म्यूजिशियन इस्माइल दरबार साथ में कई गाने क्रिएट करके अपने बैंक में डाल दिया करते थे, एंड तड़प तड़प के वाज वन सच सॉन्ग जो फाइनलाइज हुआ था फॉर अ मूवी नेम्ड दस। इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेट मुकुल आनंद जी, बट अनफॉर्चुनेटली 1997 में ही पास्ड अवे एंड द मूवी गॉट शेल्ड, जिसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एल्बम का डिस्कशन कर रहे थे, तब इस्माइल दरबार और महबूब का ये गाना उन्होंने सुना, जो उन्हें इतना पसंद आ गया दैट उन्होंने इन दोनों ही आर्टिस्ट को अपनी इस फिल्म के एल्बम के लिए फाइनलाइज कर लिया। तभी मैंने कहा कुछ गाने अपनी अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, और बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखने जाते हैं उसके पीछे ऐसी ही कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएंगे?
2: हेलो हेलो।
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, ये किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मैं तो इन दोनों ही कैटेगरीज में झूला झूल रही होती हूँ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आज डिसाइड कर रही हूँ नवरात्रि के प्रेपरेशन करने वाले लोगों की दो कैटेगरीज। ओके फाइन, थोड़ा पहले है लेकिन एक्चुअली अभी से ही इंस्टाग्राम पे इतनी सारे वीडियोस दिखने लगे हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाई मैं। सो फर्स्ट इन द कैटेगरी आर द पीपल जो गरबा और डांडिया की फुल ऑन प्रेपरेशन मोड ऑन कर चुके हैं। इन्होंने कई सारे इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो कर रखे हैं जहाँ पे गरबा आउटफिट्स मिल रही हैं या फिर ये स्क्रैच से अपने आउटफिट्स बना रहे हैं। मतलब दे आर सुपर डुपर एक्साइटेड और अभी से ही सारी तैयारी हो चुकी है चालू। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है भाई, ये भी तैयारियां करते हैं लेकिन ये गरबा या डांडिया में जाने की तैयारी नहीं करते। उस इनवाइट को किस तरीके से खारिज करना है उसकी तैयारी करते हैं। ये अलग अलग बहाने सोच रहे होते हैं। अच्छा, पहले दिन क्या बहाना, दूसरे दिन क्या बोला जाएगा, तीसरे दिन क्या रीजन दिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर अपनी बात करूं तो मैं तो भाई इन दोनों ही कैटेगरीज में स्विंग कर रही होती हूँ। आप कौन से वाले हैं, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय दी अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 90s में मूवी देखना मतलब समा बांधना।
1: 90 ml, 90 ml with Shruti.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। और यार 90s में मूवी देखना मतलब OTT खोलना नहीं होता था, मूवी देखने के लिए वीडियो कैसेट्स लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब इतना ह्यूज टर्म तो नहीं इस्तेमाल करूंगी, वो लाइब्रेरी नहीं, हमारे मोहल्ले के कोने की दुकान हुआ करती थी, वहां शेल्फ्स पे लगी कैसेट्स के कवर्स देख देख कर डिसाइड करना कि भाई आज क्या देखना है। फिर घर आते ही एक कैसेट VCR में लगती थी और पूरी की पूरी फैमिली TV के सामने। ओह, इसके पहले तो माहौल बनता था यार, पूरे घर में अंधेरा किया जाएगा, लाइट की एक किरण भी से नहीं आनी चाहिए, और बिस्तर पे अगर जगह कम पड़ जाए तो भाई नीचे गद्दे बिछाए जाते थे। और याद है वो रीवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड के बटन्स, भाई उनकी तो अपनी ही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी ना। फेवरेट सीन दोबारा देखना है तो रीवाइंड करो, मूवी खत्म तो भाई रीवाइंड करके ही कैसेट वापस करनी है, वरना तो वीडियो लाइब्रेरी वाले भैया आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता था मूवी सिलेक्ट करने का सस्पेंस, क्योंकि आपको सब कुछ डिसाइड करना होता था सिर्फ कवर देख के, और गलती से अगर वो बकवास निकली तो पूरे घर की मीटिंग होती थी कि हाय पैसे वेस्ट हो गए। देखो आज OTT पे हजार मूवीज हैं, लेकिन वो एक कैसेट चूज करने की कीमत तुम क्या जानो जेंजी बाबू, काश की वो फीलिंग भी रिवाइंड हो सकती। अब यादों का पिटारा खुल ही चुका है तो जरा ध्यान लगा के सोचिए और बताइए कि आपने VCR पे लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

चलो आज की लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इन पांच का पंच वी आर टॉकिंग अबाउट पांच साईफाई बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया वो सक्सीड भी हुई। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। नंबर फाइव पे हमने बात करी कार्गो मूवी के बारे में। नंबर फोर पर आई एक्शन रीप्ले। अब बारी है नंबर थ्री की विच इज रोबोट। 2010 में आई ये मूवी स्टारिंग रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय, डायरेक्टेड बाय एस शंकर। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने खुद के जैसे दिखने वाला एक यूनिक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा चिट्टी टू प्रोटेक्ट मैनकाइंड। बट रोबोट के पास हैं ह्यूमन इमोशंस। रजनीकांत की बहुत अच्छी एक्टिंग ऑब्वियसली। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फ्यूचरिस्टिक रोबोट का कॉन्सेप्ट विच इज अ वाइडली सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट टिल डेट। फिर सेकंड नंबर पर आती हैं एक ही फ्रेंचाइजी की दो मूवीज जो कि कंटिन्यूएशन में हैं। कोई मिल गया इन 2003 एंड क्रिश इन 2006। अपना नाम लेकर आया हूं साथ में। स्टारिंग ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा एंड रेखा जी, डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन। पहली मूवी एलियन के अर्थ पर आने की है और दूसरी मूवी बॉलीवुड के पहले ऑफिशियल और ओरिजिनल सुपर हीरो मिलने की है। फ्रेंचाइजी इतनी अच्छी है कि क्रिश 3 भी आई थी और इनफैक्ट रूमर्स ये भी हैं कि क्रिश 4 पर ऑन एंड ऑफ स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है और अगर ये बनती है तो इसको ऋतिक रोशन खुद को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। अब बारी है नंबर वन स्पॉट की। कैन यू गेस दिस मूवी जो बॉलीवुड की मेरे हिसाब से नंबर वन साईफाई बॉलीवुड मूवी है। गेस करो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। गानों के उस पार आके ये भी क्लियर करता हूं, दिस इज मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: चार फिल्में, उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्ड ऑल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ऑल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रख, रख।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये प्रेम मोल लिया, जब गाना सुना दिया तो हमने भी अपना शो जो है मोल ले लिया है। तो होकर शाम शानदार की गड्डी में सवार मस्त मौला गौरव आ गया। यार शाम के 4:04 से ज्यादा हो रहे हैं।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: कैसा होता है ना जब आपके बॉस अचानक आपसे एक ऐसी रिपोर्ट मांगते हैं जो इससे पहले आपने की ना हो, और फिर आपको लगता है यार ये रिपोर्ट अब बनानी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में डबल मेहनत ये है कि आपको तारीख भी नहीं आता है। फिलहाल खैर छोड़िए, मस्त मौला गौरव बहुत तेज है, हम तो हमेशा रिपोर्ट तैयार रखते दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे काम मिलता है तो गौरव कितना परेशान होता है। नहीं सर, मैं तो काम का पुजारी हूँ, काम की ही पूजा करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काम मिलता रहे और मैं आगे जिंदगी बढ़ता रहूँ। इन सब के बीच मैं आपको बता दूँ बहुत सारी चीजें हमारे कतर में हुई है, जैसे कि कतर एनर्जी ने अनाउंस कर दिए हैं अक्टूबर के महीने में फ्यूल प्राइसेस क्या होंगे, एचएमसी ने कैसे फर्स्ट कह सकते हैं सब पीरियोस्टियल इम्प्लांट किया है, ये जॉ का रिकंस्ट्रक्शन है वो भी 3D टेक्नोलॉजी के साथ। ये सब कुछ आपको मसमोलो गौर बताएगा अगले 4 घंटे, ढेर सारे गाने एंटरटेनमेंट की बातें यही मिर्ची पर। बस हमारे साथ अगर आप टिक जाते हैं तो थैंक यू सर, मिर्ची इट्स हॉट, एक एक करक हो जाए।

0: Milci. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na vidbala, burga.
1: Milci, burga. हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
1: आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों जीना आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: बैक टू स्कूल मींस मोर जर्नीज मोर ट्रैफिक एंड मोर रीजंस टू ड्राइव विद पीस ऑफ माइंड
5: विद बीमा मोटर इंश्योरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट QAR 400 विद 24/7 रोड साइड असिस्टेंस इंक्लूडिंग टोइंग फ्लैट टायर हेल्प बैटरी जंप स्टार्ट एंड लॉकआउट असिस्टेंस प्लस फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एंड 7% कैशबैक कॉल 800-0786 और विजिट bimaonline.com
4: बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
10: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: दर्शन रावल अंतरा मित्रा की आवाज में ओ मेहर माँ गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: यार कौन कहता है कि सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में धक-धक आता था जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता था। कभी कभी जिंदगी में धक-धक छोटी छोटी बातों पे भी आती है। अब जैसे समझिए कि आप एकदम तेज तर्रार ट्रैफिक में चल रहे और अचानक से आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई। अब आपको समझी नहीं आ रहा सिचुएशन में क्या करें कहां जाएं। ऐसे में आपको याद रखना है कि आपको भरोसेमंद इंश्योरेंस लेना है जहां पर आपको मिल जाए 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, साथ ही साथ फ्लैट टायर के टाइम पर हेल्प, टो करने की एक सुविधा मिल जाए या फिर बैटरी का जंप स्टार्ट हो या फिर लॉकआउट असिस्टेंस, जो भी चाहिए ऐसी चीजें मिल जाए। और ये कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको बीमा के भरोसे के साथ। यस, बीमा इंश्योरेंस जो लेकर आता है आपके लिए मोटर इंश्योरेंस विच स्टार्ट फ्रॉम ₹400 में बीमा आपको देता है, कह सकते हैं मोटर इंश्योरेंस। इसके साथ ही साथ वो भरोसा जहां पर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे तो वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा 24/7 है। एंड बड़ी बात ये है कि इनके फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ आपके लिए चीजें और भी आसान हो जाती है। 7% का कैशबैक भी आपके लिए लेकर आते हैं। सिर्फ एक नंबर याद रखना है, अगली बार जब आप अपना ऑटो इंश्योरेंस करा रहे तो इस नंबर पर कॉल करना है 800-786। रिमेंबर 800-786 या फिर bimaonline.com, यहां पर भी जाके आप अपने लिए अपना ऑटो इंश्योरेंस अगला चुन सकते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं कभी कभी दिल की धड़कनें इसी बात से तेज हो जाती है भैया अब करें क्या, ऐसी सिचुएशन में बीमा है ना। 89.6 मिर्ची वन पर जब गौरव ऐसी बातें बताता आपको लगता ना यार दोस्त है अपना, एक झप्पी पप्पी दे दे मिर्ची छोड़ लीजिए, चुम्मा गाना आ गया।

0: AR रहमान की आवाज में माही वे हाईवे फिल्म का ये गाना आपके कानों के हाईवे में किसने पहुंचाया? देवी और सजनों, जब हम आपके साथ होते हैं तो बस आपसे ही बातें कर रहे होते हैं और आपके फायदे की बातें कर रहे होते हैं, और आज खुशी कुछ अलग ही लेवल पर है। एंड आई एम श्योर आपकी भी सैलरी आई होगी तो खुशी तो आई होगी। चलिए तो अब सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स कुछ यू हैं। पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार राइट नाउ एट 572 कतारी रियाल, यानी कि 1 ग्राम 572 कतारी रियाल। पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2679 कतारी रियाल। पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5287 कतारी रियाल। पैम्प का 1 ounce गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 16343 कतारी रियाल में। एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज 60673 कतारी रियाल। एंड पैम्प, जो कि हमारे कतर में ऑफिशियल एजेंट लेकर आते हैं अल फरदान एक्सचेंज, पैम्प वो स्विस सर्टिफाइड गोल्ड है जो आपको 24 कैरेट प्योरिटी की गारंटी देता है एंड आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सटीक एंड बेस्ट होता है। एंड जब आप इसका रिटर्न चाहते हैं फटाफट मिल भी जाता है। 89.6 मिर्ची 1 पर ये थे अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट्स। मिर्ची इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न Airways Avios today. Visit our branches or download the app now.

0: ऐ न मलाई लाई दिस सुहासी दे
1: मस्त मौला गौरव।
0: ये गाना सुन के हम कंफ्यूज हो जाती, हमको नहीं समझ में आती मुसुहासी क्या होता है भाई। फिलहाल के लिए इतना जरूर जानते कि मुस्कान क्यूट सी गर्ल की बात हो रही है। वैसे इन सब के बीच मस्त मौला गौरव ये कहेगा, कब वो क्यूट मौसम आएगा जब हम सब बाहर निकल के घूम पाएंगे।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: अगर बात की जाए दिन का मैक्सिमम तापमान आज 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, 40 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम, मिनिमम अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। एंड बड़ी बात यह है दोस्तों, मौसम में गर्मी लगातार बरकरार है, उसकी वजह है ह्यूमिडिटी जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात की जाए तो आज कल के मुकाबले जरूर कम है 33%, लेकिन हवाओं की रफ्तार जैसे जैसे तेज होगी चीजें बेहतरीन की तरफ बढ़ेंगी एंड मौसम धीरे धीरे तो बेहतर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट डे ऑफ सितंबर अक्टूबर आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा अगले एक हफ्तों में मौसम और अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot. हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
1: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
0: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
2: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
3: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
2: This initiative is driven by GWM.
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मोरे आगे बारू में ये गाना।
1: पर आपके साथ दोपहर के 5:04 बोल रहे, नहीं 5:05 या शाम के
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: यार मतलब समझ ही नहीं आ रहा, 30th of September की तारीख है, अभी भी मौसम में इतनी तलकलाहट है, मतलब इतनी गर्मी। कोई नहीं जी, हम कॉन्टेस्ट खेल के थोड़ा कानों की गर्मी बढ़ाते हैं।
3: पहचान कौन?
1: तो पहचान कौन में एक आवाज आपके कान में जाती, आप हमको बताती ये किसकी आवाज आती।
4: क्या हो या चाहे आपकी गहरी दोस्ती हो, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली कोलैबोरेटर, भाई सब कुछ है वो मेरे, मैं उनको भाई बुलाता हूँ।
1: एंड ये कौन है और ये किसको भाई बुला रहे हैं? खैर अगर आप इस आवाज को पहचान रहे तो फटाफट से अपना जवाब बताइए 5000196 पर।
4: क्या हो या चाहे आपकी गहरी दोस्ती हो, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली कोलैबोरेटर, भाई सब कुछ है वो मेरे, मैं उनको भाई बुलाता हूँ।
1: 5000196 पर ये आवाज जो आप इस वक्त मिर्ची पर सुन रहे हैं, ये रेडियो मिर्ची पर चल रही आवाज किस की है? हाँ जी, आज एक्टर तो नहीं है।
4: क्या हो या चाहे आपकी गहरी दोस्ती हो, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली कोलैबोरेटर, भाई सब कुछ है वो मेरे, मैं उनको भाई बुलाता हूँ।
1: 5000196 5000186 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर बताइए, वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर दीजिए कि गौरव ये जवाब फलाने का है और मेरा नाम ये है। हाय गौरव, मेरा नाम ये है और ये जवाब ये है। 5000196 पर बस बड़ा गौरव इंतजार कर रहा है बी प्राक की आवाज में। फिलहाल सच का दायरा बढ़ाते हैं एंड आपके कॉल का इंतजार कर रहा है स्मॉल गौरव। जल्दी भेजो अपनी सारे मैसेजेस 5000196 पर, वॉइस नोट में जितनी जल्दी सके भेज दो ताकि कतर पूरा आपका आंसर सुन ले। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virgola, la burka. Mirci, burka.
1: Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
8: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
9: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. आपकी चॉइस की लोअर प्राइस पिज्जा बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम 26th to 30th September, तो टेंशन मत लो। ऑर्डर नाउ फ्रॉम पापा जॉन्स एंड डबल द टेस्टी फन। वैलिड ऑन ऑल पिज्जा साइजेस। पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा।
10: खट खट,
11: हु देयर?
10: बनता
11: बनता हूँ।
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
11: खट खट, हु देयर?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: नाचो नाचो विशाल मिश्रा राहुल सिपल गुंज की आवाज में गाना किसने सुनाया। लेकिन आज पहचान कौन में एक आवाज सुनाई और आपको पहचाननी किसकी आवाज है?
1: क्या हो या चाहे आपकी गहरी दोस्ती हो एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अब कोलैबोरेटर भाई सब कुछ है वो मेरे, मैं उनको भाई बुलाता हूँ।
0: 5000196 पे जवाब मंगाया था, जवाब आ गए
2: भाई। द आंसर इज करण जौहर।
0: ओके
2: खालिद भाई।
0: ओके खालिद भाई, थैंक यू।
3: हाय गौरव।
0: हाय हाय,
3: मेरा नाम नीरज है और ये आवाज करण जौहर की है।
0: ओके
4: गौरव जी, ये आवाज है करण जौहर की, मिर्ची इट्स हॉट।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू।
5: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई,
5: मैं रुपेश शर्मा बोल रहा हूँ
0: जी। रुपेश जी,
5: ये आवाज है करण जौहर की।
6: गुड इवनिंग गौरव
0: जी, गुड
6: इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, यूसुफ जी, जी। हाँ, ये आवाज है करण जौहर की और शायद ये शाहरुख खान के बारे में बता रहे हैं।
0: ओके
6: थैंक यू, बाय बाय।
7: हाय मिस्टर गौरव, ये जो आपने क्लिप सुनाया है ये आवाज करण जौहर का है।
8: जोसम गौरव, द आंसर टू द क्वेश्चन इज करण जौहर। माय नेम इज जोसफ जॉय। थैंक यू
0: जोसफ भाई। जॉय ला दिया आपने, 100% करेक्ट आंसर है। सबने कहा है करण जौहर, करण जौहर ही है और कोई हो भी नहीं सकता। एंड यस, उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए ये जवाब दिया था। एंड 89.6 मिर्ची वन पर ये गाना मैंने आपको यहाँ सुनाने की सोची है। आइए आगे बढ़े, मिर्ची इट्स हॉट।

एक बात तो है, हमें हमारा कतर नीट एंड क्लीन बड़ा अच्छा लगता है और हम सबको बताते भी हैं। और अब इस नीटनेस को, इस क्लीननेस को और बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने फ्यूचर के लिए एक तैयारी कर दी है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने 6th रीसाइक्लिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 की बात कह दी। अक्टूबर 6th एंड 7th को कतर में होने जा रहा है। Yes, और बड़ी बात यह है कि ये दो दिन का एक इवेंट जो है, ये प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एंटिटीज और इंडस्ट्री के ढेर सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ लेके आने वाला है ताकि वो डिस्कस कर पाए उस स्मार्ट सॉल्यूशन के बारे में जो वेस्ट मैनेजमेंट को एक तरह से अच्छा करे, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बढ़े। और इस बार स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और उनके लिए भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज होगी। कुल मिलाकर कतर मीडिया कॉरपोरेशन पहली बार इसका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी बन रहा है, तो मतलब बात अब दूर तलक जाएगी और कतर के रहने वालों को समझ में आएगी। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट से लेकर हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट वो रिसाइकिल हो, उसका फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल यू नो सॉल्यूशन हो, यही अब आने वाले टाइम होने जा रहा है और इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस होगी। याद रखिए, अगर आपके बच्चे भी इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर जाकर डिटेल देख सकें। अक्टूबर 6th एंड 7th एट राफेल सोहा, जहां पर बहुत सारी बातें होंगी एंड मुझे लगता है एक सस्टेनेबल फ्यूचर कैसा बने उसके लिए कुछ बड़े डिसीजंस इसी कॉन्फ्रेंस में लिए जाएंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
8: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लड़की देखी मुझसे सीटी बहुत बच के रहे भैया, पुलिस भी ले जाती। हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ देवी और सजनों। फिलहाल एक तारीख है, हमारे मुंह से सीटी, हाथों से तालियां ही बज रही है, क्योंकि सैलरी आने के बाद अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। तो आपको बता दे, अगर बात करें तो इस वक्त आपको एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस पूरे 26 रुपए 26 पैसे के रूप में मिलेंगे। यस, 26.26 हैं इंडियन रुपीस, यानी कि अगर आप घर भेजना चाह रहे हैं तो एकदम बेस्ट रेट आपको मिल रहे हैं 26 रुपए 26 पैसे के साथ। फटाफट से अपने घर भेजो, लखपति बन जाओ। इसके साथ लंकन रुपीज 90.76 अगेंस्ट 1 कतरी रियाल इज द लंकन रुपीज रेट। वहीं जनाब, अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.18 पाकिस्तानी रुपीस। तपाईको नेपाल रुपीस का रेट छोड़ आजो, 1 कतरी रियाल के बदले 42.01 बहिनी। हाँ जी, 42.01 का रेट छोड़ आए। अगर घर भेजने लाई तो सही टाइम छो, अगर अभी सेमली आ गया है तो घर भेज दो। एंड ये रेट हम मस्मोल गौरव बता रहा मिर्ची पर। इसके बाद अगर बात करेगा तो यस बंधु, बांग्लादेशी टका दादा 1 कतरी रियाल के बदले 33.77, तो 33.77 एट द रेट अच्छे बांग्लादेशी टका चिलम अगर आप 1 कतरी रियाल घर भेजेगा। एंड दिस वॉज आई फी एक्सचेंज रेट।
1: लाया आई पे बेस्ट एक्शन रेट्स, भेजो खुशियाँ और पैसे दोनों ही घर पे।
0: एंड सुनते रहिए मिर्ची पर गाने। आज सैलरी आई, अच्छी फीलिंग, तो झिंगाट गाना। हाँ।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
2: I don't have to mouth those lines.
3: Sorry, bro. Sorry.
2: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन इन दिस जॉनर एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
1: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
5: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
4: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: विशाल शेखर बी प्राक की आवाज में ही आसमानी गाना किसने सुनाया मेरे जानी एंड अब मस्त मौला गौरव बताएगा कि जब आप घड़ी की तरफ देखेंगे तो आपको टाइम नजर आएगा 6:04 से थोड़ा ज्यादा
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
0: और इन सब के बीच देवी और सज्जनों आज मौका है एक बार फिर से अपनी गाड़ी में अगर फ्यूल भराने का तो भरा लीजिए क्योंकि अक्टूबर के लिए कुछ चीजें बदली हैं कुछ नहीं
2: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: Well, अगर बात करें तो yes, announcement आ गई है कतर एनर्जी की fuel prices for the month of October 2026. Premium grade petrol and diesel बिल्कुल unchanged है यानी कि अगर हम बात करें तो price of premium grade petrol जो है वो 2 कतरी रियाल पर लीटर से अब मिलेगा आपको Yes, 1.95 कतरी रियाल पर लीटर लेकिन सुपर ग्रेड एंड डीजल आपको उसी रेट पर मिलेगा जिसमें आपको वो पूरे सितंबर मिला है लेकिन बड़ी बात यह है आदि जिसको हम प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल बोलकर बोलते हैं वो अब कतरी रियाल 2 की जगह 1.95 कतरी रियाल पर लीटर मिलने वाला है वही सुपर ग्रेड पेट्रोल आपको कॉस्ट कर रहा है 2.10 कतरी रियाल पर लीटर एंड 2.05 पर लीटर अगर हम डीजल की बात करें ये दोनों ही प्राइस सेम टू सेम है एंड ऐसे में इतना कहेगा यहां पर जब ये दाम तो ऐसे लगता है यार काश अपने अभी ऐसा हो पाता कितने यू नो कितने ट्रिप्स इसलिए कैंसिल कर दिए जाते नहीं जाने दे यार पेट्रोल बड़ा महंगा है 89.6 मिर्ची वन ऊपर वाले थैंक यू मैं कतर में हूँ आराम से भरवा के घूमता हूँ मिर्ची छोड़

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: हेलो ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई।
3: हेलो क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी।
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी।
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी।
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी। आपको मालूम है आपने क्या किया है?
3: मैंने क्या किया?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी? जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है। बेवकूफी की बात कर रही है।
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे।
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास।
2: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप। आप क्या कर सकती हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: सुनिए मत, सुने। और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से। हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी ट्यून लगती है। आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
2: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी।
3: हाँ बताइए
2: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जे
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Our business is our business. None of your business.
8: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
4: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

उड़ जा भाई, उड़ जा। क्लास में न जाने कौन कौन सी चीजें उड़ाते थे। मस्त मौला गौरव। यार मतलब मैं अगर बात करूँ ना, हम अपने स्कूल डेज में इतने शैतान थे कि क्लास में कभी जूता तो कभी कागज से बना रॉकेट भी उड़ा देते थे, और इस बीच अगर कोई टीचर आ जाए तो फिर अच्छे से मार खाते थे। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि स्कूल डेज की यादें ऐसी होती है ना, आंखें बंद करो, अपने दोस्तों को याद करो और क्लास के उस टाइम पे पहुंच ही जाते हो जहां पर आपने ढेर सारी शैतानियां की हैं। एंड ऐसे ही स्कूल डेज को हम एक बार फिर से जी रहे हैं विद GWM मिर्ची रिचार्ज। यस, GWM लेकर आए हैं मिर्ची रिचार्ज, जहां पर हम स्कूल के बच्चों के साथ करें ढेर सारा फन, मस्ती, धमाल। एंड ऐसे ही धमाल करने हम GMI स्कूल गए थे। एंड अब बारी आने वाली है एक और स्कूल की। कौन सा स्कूल है, अपने कान थाम के बैठिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके स्कूल भी आए तो 5000 1896 पर फटाफट से अपने स्कूल का नाम और अपना नाम मैसेज कर दो, एंड अगर लकी हुए तो हम आपके स्कूल में आएंगे और वो सारी शैतानी, वो सारी मस्ती हम आपके साथ करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार स्कूल की बात ही अलग है, एंड जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाई का स्ट्रेस लगता हुआ कितना काम है और कितना प्रोजेक्ट मिलता है, कितने चीज़ों को सबमिट करना पड़ता है। पर एक बात याद रख लो, जब स्कूल से बाहर निकलोगे ना तब लगेगा स्कूल की ही दुनिया असली मैजिक की दुनिया थी। इसी उम्मीद में कि आज आप जिंदगी की बातों में भले ही उलझे लेकिन स्कूल टाइम को याद करते ही चेहरे पर एक हंसी आती है। अगला गाना उलझाने वाला, राघव तनिष्क बागची आशीष कौर मिर्ची पर। एंड याद रखिए GWM मिर्ची का ये रिचार्ज इसीलिए तो लेकर आए कि बच्चे जो हैं हाफ ईयरली के बाद, एग्जाम्स के बाद अच्छा फील करें, और वही फीलिंग हम ला रहे हैं। आप भी बताओ किस स्कूल आए मिर्ची थॉट।

और सजनी रे, मेरी आवाज में कितना खराब लगा ना, इसीलिए अरिजीत अच्छा गाते हैं, इसीलिए हम उनको सुनाते हैं। लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जिस शहर में हम किराए दे के भी इतने अच्छे फ्लैट में रह पाते हैं, अगर आपने वहाँ कोई प्रॉपर्टी ओन की है तो अगली खबर आपके काम की है। #974974 यहाँ आपको बताना चाहेगा दिस सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो, यस, जिसे हम प्यार से CGB कहते हैं, उन्होंने सारे बेनिफिशियरीज एंड ओनर्स ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स को ये बताया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दे दें, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं एस्कान प्लेटफॉर्म पर, ESKAN, ये एस्कान प्लेटफॉर्म पर। बाय October 13th यू हैव टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई योर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड ये सब कुछ करना है, अभी उन्होंने कहा है ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, एंड ये इंश्योर कर रहा है कि आपके हाउसिंग सर्विसेज एंड जो भी आप उस प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ डिजिटल सर्विसेज को और बेनिफिशियरीज को आराम से मिल रही है कि नहीं। उसके साथ ही साथ ये एस्कान प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप अपने सारे डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हो, आपकी ये सारी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली पूरी होती है एंड डिजिटलाइज में डिजिटल वे में आप आराम से यहां से बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड अपनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पाते हो। सो अगर आप रेजिडेंशियल यूनिट के ओनर हो इन कतर, तो ब्यूरो ने आप सर्च किया है कि आप अपने सारी इंफॉर्मेशन का अपडेट एस्कान प्लेटफॉर्म पे बाय October 13th दे दें, एंड हमारा भी सपना है एक दिन एक अपना अच्छा घर हो लुजैल के साइड में, वखरा के साइड में, ताकि हम बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को बता पाए कि देखो हम यहाँ रहते थे, यहाँ अपना गाड़ी चला के मिर्ची स्टूडियोज पहुंचते थे, बहुत सारी बातें करते थे। और फिर ऐसे खास देंगे, बच्चों को लगेगा अंकल कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। 89.6 मिर्ची वन, फिलहाल जब होगा तब होगा, अभी तो धतिक नाच, सैलरी आई है भाई, एनर्जी बरकरार रखो।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक। Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate। और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate। है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds।
8: खट खट।
9: Who that?
8: अकबर।
9: Who?
8: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
9: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi,
4: it's hot.

वेस्ट इंडीज भी सोच रहा हुआ कि कितना रन बनाए कि इंडिया के लिए कम पड़ जाए। पहला वनडे हारने के बाद वेस्ट इंडीज ने आज ताबड़तोड़ बैटिंग की, बना डाले 50 ओवर में 405 बड़ा स्कोर। लेकिन वेस्ट इंडीज को क्या पता था कि टीम इंडिया इस 406 को ऐसे चेस करेगी। 308 रन बन गए मात्र 30 ओवरों में और टीम इंडिया जीत की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। एक बार फिर से जीत के सूत्रधार रोहित शर्मा, जिन्होंने 75 बॉलों में 101 बना दिए और साथ में कप्तान शुभमन गिल तो एक अलग ही लेवल पे खेले, 100 बॉलों पर 173 एंड उनका साथी विराट कोहली। मैच में जीत सुनिश्चित है, अब विकेट 9 रहेंगे कि 7 ये मुझे देखना है, मैंने गेस किया है। वेल कुल मिलाकर इंडिया को बस अब 92 रन और चाहिए। बुरी तरीके से पिटाई हो रही है वेस्ट इंडीज बॉलरों की। एक चीज जरूर कहूंगा, इन सब के बीच टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में टॉप 10 में जगह बना ली है। यस, अब हम 10 मेडल के साथ 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए। हमसे ऊपर बहरीन जरूर है विद 11 गोल्ड मेडल्स, ईरान 11 गोल्ड मेडल्स, थाईलैंड 12, लेकिन टॉप अभी भी लीड कर रहा है चाइना विद 151 गोल्ड मेडल और चाइना से 1/3 है सेकंड पोजीशन पर जापान विद 50 गोल्ड मेडल। यार कमाल की तैयारी करते हैं, सामान इनका भले उतना ना चले लेकिन इनके खिलाड़ी जबरदस्त चले हैं जी। मस्मोला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वाली थॉट। One more.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
4: टॉयलेट
3: हाँ.
4: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था.
3: दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Cut.
7: Are bhatt hu?
6: Bhatt. Bike bahut awaz karti hai.
7: Cut. Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. It's hot.

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot.
1: एल मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 7:01 एंड लास्ट आवर की तरफ बढ़ने से पहले मस्मोला गौर ने बता दिया आपको टाइम चेक फ्रॉम नसी
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: देखिए दुनिया में एक मजा तो हम सिर्फ गल्फ लेते हैं और वो है कम प्राइस पर फ्यूल का, और इस महीने तो ये और कम हुआ है।
1: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: Well, Qatar Energy ने अनाउंस कर दिया है the month of October के लिए fuel prices, जहां पर आपको बता दें कि super grade petrol and diesel ये बिल्कुल unchanged रहेंगे, लेकिन premium grade petrol का दाम जरूर घट गया है। Premium grade जिसको हम आदि बोल के अपना टैंक फुल कराते हैं, वो premium grade आपको अब कतरी रियाल 2 की जगह कतरी रियाल 1.95 पर लीटर पे मिल जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी बचत जबरदस्त तरीके से 0.05 की हो गई है। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पूरे महीने हमें प्रीमियम ग्रेड आदि जो है वो सस्ते मिलेगा, लेकिन सुपर ग्रेड एंड डीजल की बात करें तो ये उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस महीने ये पूरे सितंबर में मिला है। यस, कतरी रियाल 2.10 पर लीटर सुपर ग्रेड एंड डीजल ऑल्सो एट 2.05 कतरी रियाल पर लीटर। तो अक्टूबर के महीने में आप इसी तरह पेट्रोल भरवा कर घूमते फिरते रहिए जैसे सितंबर में घूमे थे, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जिस चीज के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं, अगर 5-10 रुपए बढ़ जाएं, हम इंजॉय करते हैं, ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं कि हम यहाँ 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Milci.
1: Iskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
3: हेलो
2: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
3: हेलो हेलो
2: हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: आप मेरे यहाँ बजाने वाले थे, बजाने वाले थे। यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
6: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है?
5: हाफ पे बैक मतलब?
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
5: वाओ, किस किस चीज पे?
6: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
6: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की? हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: खट खट।
9: कौन है?
8: अज्जू।
9: अज्जू कौन?
8: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
9: खट खट, हु दैट?
10: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप भी कुछ कमिट करते हो लेकिन उसके बाद उस कमिटमेंट को भूल जाते हो, तो भाई कतर से सीखो अपना कमिटमेंट निभाना। जब बात सस्टेनेबिलिटी की आती है, कतर अपने इस पूरे के पूरे कमिटमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने अनाउंस किया है 6th रिसाइक्लिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कतर में 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, राफेल्स दोहा में ये एक पूरा इवेंट हो रहा है जहां पर पूरी दुनिया को कतर दिखा रहा है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकिल करके एक बेहतर कल कैसे बनाया जा रहा है। Yes, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्कूल के बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि आने वाली जनरेशन को यह पता लग जाए कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे अपनी लाइफस्टाइल में फिट किया जाए। एंड अगर बात करें तो yes, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज कर कतर एक बेहतरीन कल बना रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि अगर आपने कुछ कमिट किया है तो उस पर मेहनत कीजिए, काम कीजिए और वो सपना पूरा होगा। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोर और गौरव भी बस ऐसा ही सपना देख रहा है कि एक दिन हम भी बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मिर्ची, इट्स हॉट।

इस 50 कदरी रियाल की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। अरे 2 लाख कतरी रियाल जिता सकता है तुम्हें ये 50 कतरी रियाल, या फिर साल भर का पिज्जा फ्री खिला सकता है तुम्हारा ये 50 कतरी रियाल। यस, क्योंकि पापा जॉन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 20th एनिवर्सरी इन कतर, और ऐसे में उन्होंने अनाउंस किया है 2 लाख कतरी रियाल तक का प्राइज मनी, जहां पर आपको स्पेंड करना है 50 कतरी रियाल उससे ज्यादा, एंड आपको मिलता है एक रैफल नंबर, एंड आप उस रैफल ड्रॉ में शामिल होते हो जहां पर आपके पास मौका है 200,000 कतरी रियाल जीतने का, एंड इसके अलावा पूरे साल भर का पिज्जा बिल्कुल फ्री। यस, आपको एकदम इंतजार नहीं करना है, पापा जोन्स आपको साल भर का पिज्जा दे रहा है। और पिछले दिनों मैंने पहले 5 विनर से मुलाकात भी की जिनको साल भर का पिज्जा मिला है। हमने कहा हम भी आपके दोस्त हैं, थोड़ा बहुत हमसे भी शेयर कर लो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन कीप ट्राइंग योर लक विद पापा जोन्स पिज्जा, जहां पर 50 कतरी रियाल या उससे ज्यादा स्पेंड करते ही आपके पास मौका है इस 2 लाख कतरी रियाल पर अपने दावे का, एंड या फिर साल भर का पिज्जा सब्सक्रिप्शन पा जाओ फ्री में। जी, मस्मोला गौरव ने बताया है, तो अगर आप जीत जाना तो थोड़ा हिस्सा हमारे पास ही पहुंचाना, एंड तब तक लिए बेटर इंग्रेडिएंट्स बेटर पिज्जा, keep enjoying Papa John's मिर्ची, it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold.
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। Festivities की planning,

0: क्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
1: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
0: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
2: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

डू यू नो, अरे हम भी सब जानते हैं, अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं तो गलत करते हैं। हाँ जी, हमारे अंदर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि अरे आई नो एवरीथिंग, ये बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अपने कान जितने खुले रखेंगे, विचारों को जितना अंदर आने देंगे, उसी से आप और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। कभी कभी मैं बहुत काम की बातें करता हूँ, मुझे पता है, एंड मेरे पापा भी मुझे यही समझाते हैं कि देखो अगर तुम्हें सब कुछ पता भी है तो किसी के सामने ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से उन्हें पता ही लग जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसीलिए कुछ बातें बड़ी बड़ी बोलनी नहीं चाहिए और आपके एक्शन आपकी बातों को डिफाइन भी कर देते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आपको मेरी ये बात समझ में आई और आने वाले टाइम में ऐसे ही एक्शन सूरज चाचू भी दिखला दे तो मजा आ जाए, जहां पर वो थोड़ी सी ठंडक को आने दें। बात करें तो कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि थर्सडे अक्टूबर 1 से आपको थोड़ी बहुत चीजें बदलती दिखेंगे, यानी कि आप देखेंगे अचानक से हवाओं का तेज होना। एंड क्या ये ठंडी को लेकर आ रहा है, क्योंकि कल अक्टूबर शुरू हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है मौसम बदलेगा दोस्त और अक्टूबर हमें बिल्कुल वैसे नहीं सताएगा जैसे जुलाई अगस्त सितंबर ने सताया। यहां पर थोड़ी सी राहत आएगी इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मौसम बेहतरीन आएगा, ताकि वीकेंड्स पर बीच पार्टीज, आउटिंग में बारबेक्यू, ये सब हो पाए। मस्मोलोग और लेरा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में यही मिर्ची पर। अभी तब तक ले मां सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: कैसे इमोशंस को मेटाफर्स में डाल के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे जो गाने लिखने वाले गीतकार हैं लिरिसिस्ट, उन्होंने दिल टूटने को क्या बखूबी यू नो बयां किया है। सो फॉर एग्जांपल, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, कहीं आग लगे कुछ भी हो जाए गगन गिर जाए, लेकिन टूटे दिल की पीड़ को सहना इज बहुत ही मुश्किल।
1: मिर्ची कैफे।
0: वेल, इस टूटे दिल को मैं बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक के द्वारा जोड़ने की कोशिश करूंगी। मैं हूँ पारुल। शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची। अभी आपने सुना ताल से ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और ब्यूटीफुल का नाम ले रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं अमित त्रिवेदी। अगला गाना आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल। इस शो पे आज बहुत ही अमेजिंग बातचीत होने वाली है, एक गेस्ट होने वाले हैं स्पेशल मेरे साथ। आप बस यहीं बने रहिए, एंड रिमेम्बर, चाहे दिल कितनी भी बार टूट जाए हमारा, लेकिन ना दिल की एक ऐसी छिपकली की पूंछ वाली टेंडेंसी होती है कि फिर से जुड़ ही जाता है हमारा दिल। वक्त लगता है पर जुड़ जाता है। अब आप कहोगे क्या गंदा मेटाफर दिया इसने यहाँ पर, बट कोई नहीं, गाने अच्छे चला रहे हो आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी आ रही हूँ लौट के वापस। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देख बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
3: हूँ
2: मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
3: आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: इज फ्रॉम 2004 की एक फिल्म कॉल्ड मीनाक्षी, रीना भारद्वाज की आवाज, राहत इंदौरी साहब के पोएटिक लिरिक्स और रहमान सर का म्यूजिक, ये मैजिकल कॉम्बिनेशन जो बनता है ना भाई इस गाने में, मजा आ गया मुझे सुनकर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और पता है, रिश्तों की बात करो, ऐसे गूज़बम्स वाली फीलिंग्स की बात करो, और एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई जो ये प्यार है, मोहब्बत है, सेल्फ लव पहले आना चाहिए, बिकॉज लव इज नॉट टू बी फाउंड इन समवन एल्स बट इन आवरसेल्व्स। पर मुझे पता क्या लगता है, इस धरती पे जो हम ये सारे लोग भेजे गए हैं, आई डोंट थिंक जो सेल्फ लव भी है वो भी पता चलेगा जब तक आप के पास कोई और ना हो फीलिंग्स शेयर करने के लिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि कभी कभी ना खुशी सिर्फ तभी महसूस होती है जब आप उसे शेयर कर सको। होता है ना कि हमें कोई चाहिए बताने के लिए कि यार आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या कोई पूछने के लिए चाहिए कि ए सुन तू ठीक है। समटाइम्स इट्स जस्ट आपके दिल की बात समझने वाला कोई, फिर आप अपने आप से प्यार करो, खुश रहो, जो भी करो, बट वी नीड पीपल अराउंड अस। नहीं, आफ्टर ऑल दिल बहुत ना समझ है, 10 बार टूट कर भी वही करता है, तो कोई तो चाहिए ना समझाने वाला आसपास। और ये अगला गाना केके की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची कैफे। एंजॉय दिस, आती हूँ वापस, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
1: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
0: हाफ पे बैक मतलब?
1: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
0: वाओ, किस किस चीज पे?
1: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
0: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी।
1: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
2: जाहिर
3: जाहिर जाहिर हूँ।
2: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
3: खटखट हू दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: चला फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती, मोहित चौहान की आवाज में, एन इंटेंस सॉन्ग राइट। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द लव या अफेक्शन या जता नहीं पाते, लेकिन ये जो हमारा खून है, ये जो इतने उबाले मारता है यार, गुस्सा तो हम सबको एक्सप्रेस करना आ जाता है, लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों है?
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। सो द मैन हिमसेल्फ स्वानंद किरकिरे मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि एज अ लिरिसिस्ट भी उनको रियल लाइफ में मुश्किल होती है प्यार जताने में, एक्सप्रेस करने में। प्लीज बताए ना मुझे, आपको क्या लगता है इस बारे में स्वानंद जी, क्यों हमें प्यार दिखाना या जताना नहीं आता?
2: सही बात है, हम लोगों को, हमारे और खासकर हम सभी लोगों को प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता। तो जब हम गाने के थ्रू कोई बात बोलते हैं तो वो बात पहुंचती है लोगों तक, और मैं भी वही हूँ, मुझे प्यार नहीं एक्सप्रेस करना आता असली जीवन में, इसलिए मैं घुमा घुमा के बातें करता हूँ और यहाँ वहाँ के गाने बनाता उल्टे सीधे।
0: ठीक है, टेढ़े मेढ़े शब्दों में ही सही, कहीं ना कहीं आप जता रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जो वक्त था ना जब हम लेटर राइटिंग करके एक्सप्रेस करते थे या एक चिट में छोटा सा मैसेज देके चले जाते थे, अब कहाँ वो व्हाट्सएप पे इमोजी के जरिए एक्सप्रेस कर पा रहा है कोई। सिखाना पड़ेगा ना प्यार जताना, तुम सिखा दो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, it's hot.

0: सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। कितने सारे हमारी जिंदगी में रिश्ते होते हैं ना, लेकिन जो सबसे खास होते हैं हम सबसे ज्यादा उन्हीं को हर्ट करते हैं, उलझा लेते हैं, सुलझाते नहीं है हम। ये जो सुलझाने वाले शब्द है ना, ये सिर्फ गानों में आ रहे हैं मुझे लग रहा है।
1: मिर्ची कैफे,
2: मैं हूँ स्वानंद गिरगिरे और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पर पारुल के साथ।
0: थैंक यू सो मच कि आपने ये वक्त निकाला मेरे लिए स्वानंद जी। मैंने सुना है आप सिंगल्स भी बना रहे हैं, नए गाने लेकर आ रहे हैं, प्लीज इनके बारे में बताइए।
2: ये बहुत इंडिपेंडेंट गाने बनाने की मैंने जो एक पहल शुरू की है। फिल्म के गानों के अलावा जो इतर जो गाने बनाए हैं, मैंने 6 गाने बनाए। शोरगुल नाम का एक गाना है, मेरी जान नाम का एक गाना है, ऐसे नाम को देखिए, चांद आवारा, तो उस सीरीज में मैंने ये मेरे साथ चल बनाया है और ये बिल्कुल ही अपने लिए बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है और खुद कंपोज भी किए हैं ये सारे गाने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अगर ये लोगों को अच्छे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार आपके काम को पूरी स्वीकृति मिली है।
0: तो मुझे लगता है मैजिक यही लाया करता है कि कैसे आप जीवन की रियलिटीज को जो आप जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनको शब्दों में पिरोने का काम जो आप करते हैं माइंड ब्लोइंग करते हैं सर। गाते भी आप कमाल का है, तो आप प्लीज एक काम करिए मेरे लिए, जो आपका ये नया गाना आ रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल मेरे साथ चल, ये मैं आज मिर्ची कैफे पर मैं सुनाने वाली हूँ सभी मेरे लिसनर्स को। लेकिन उसके पहले ये गाना आपको मुझे सिखाना है, ठीक है? चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा ऐसे निभा पाऊं थोड़ा बहुत। प्लीज अब मैं आपके साथ ये गाना गाऊंगी और फिर हम सारे लिसनर्स को ये आपका लिखा हुआ कंपोज किया हुआ नया गाना सुनाएंगे। लेट्स डू दिस सर।
2: ठीक है।

0: कर।
1: बहुत सुंदर। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ दिखाओ,
0: मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। बहुत प्यारा, दिल खुश हो गया सर मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं मेरे साथ चल स्वानंद जी का गाना। एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, अभी जाइएगा मत, आ रही हूँ वापस। इट्स हॉट।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जैसे कश्मीर में पश्मीना बनता है ना, पश्मीना कितना एक्सपेंसिव होता है, कितना वैल्यूएबल होता है, कितना डेलिकेट, वार्म और प्रेशियस होता है, वैसे ही मोहब्बत होती है। इसी फीलिंग को यू नो पिरोया गया है इस फिल्म में। द फिल्म वॉज कॉल्ड फितूर और ये गाना और इसका म्यूजिक, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स सब ओवरऑल वही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देते हैं। यार म्यूजिक ही हमें ओवरऑल ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि हम कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी गाना आपके दिल को पहुंचा है ना, या कोई लिरिक्स जो आपके दिल को छुए हैं और आप कहीं और चले गए, जो लाइफ में चल रहा था उसको भूल कर एक सेकेंड के लिए भी, तो म्यूजिक है ना फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन भी तो यही करता है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और खूबसूरत गानों की और खूबसूरत म्यूजिक की और खूबसूरत लिरिक्स की ये जादूगरी होती है कि ये हमें कहीं और ले जाता है, भाग जाता है हमारा मन खटाक करके और हम कहीं पहुंच जाते हैं। ब्यूटी ना, तो चलो थोड़ा सा ये वाला मूड ब्रेक करके आपको दूसरे मूड की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुनिधि चौहान जी को बुलाते हैं गाना गाने के लिए हमारे लिए। नहीं, मेरे साथ बात करने नहीं आ रही है वो, बट द नेक्स्ट ट्रैक उनकी आवाज में आप सुनेंगे। मैं हूँ पारुल, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टाग्राम पे paruls.world के नाम से। लेट्स कनेक्ट यार, बताओ मुझे कि कैसा लगा आपको ये शो। और जब तक ये गाना सुन रहे हो, डू गो टू इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट विद मी, paruls.world के नाम से मैं आपको मिलूंगी। प्लीज मुझे बताते रहा करो आपको कौन सा गाना अच्छा लगा इस शो पे, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, डू लेट मी नो। पर अभी शो खत्म नहीं हुआ है, वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में। सुनो तब तक इस गाने को, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: फिल्में उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल्डा।
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लेकर आती हूँ मैं मिर्ची कैफे शो पर। ये मेरा काम है और मेरा नाम है पारुल।
1: मिर्ची कैफे।
0: कृष्णा सोलो की आवाज में अभी आपने सुना रंग रेज, अमेजिंग गाना नहीं? अच्छा, आज क्योंकि स्वानंद जी यहाँ पर थे मेरे साथ, बातचीत करी हमने, एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस मैं अभी यहाँ पर आपको देकर जाना चाहती हूँ आज, बिफोर आई लीव यू। अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की है, आपने कीड़े देखे होंगे मैंगोज में, आपने वर्म्स या कीड़े देखे होंगे एप्पल्स में, पर क्या आपने कभी नींबू में देखा है कोई कीड़ा? नहीं ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट बी टू स्वीट टू द रॉन्ग पीपल, क्योंकि फिर वो ज्यादा स्वीट होना डायबिटिक बन जाता है हमारे नेचर के लिए और वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं होता फिर, समझ रहे हैं आप? अरे यार, जो लोग आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तारे गिनते हुए छोड़ दो उनको। अरे आगे बढ़ो यार लाइफ में, चिल करो बस, अपने आप को खुश रखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सबको, अपना अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। डू कनेक्ट विद मी ऑन 7045983983 या फिर इंस्टाग्राम paruls.world। मुझे बता सकते हो कैसे गाने लगे आपको आज के शो के, कैसी बातचीत लगी, आपको कौन सा गाना सुनने का मन है इस शो पे, प्लीज डू लेट मी नो। और जितने भी लोग मुझे डीएम्स करते हैं ना, अब मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा इधर उधर एक दो दिन शायद लेट हो जाती हूँ, पर रिप्लाई सबको करती हूँ। सो या प्लीज डू राइट टू मी। चलती हूँ अभी यहाँ से, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। Well, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के नाम बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
5: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
7: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
6: हाफ पे बैक मतलब?
7: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
6: वाओ, किस किस चीज पे?
7: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
6: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
7: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: कट कट,
9: हू दैट?
8: जस्सी।
9: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
8: जस्सी हू हैज कम आंटी जी।
9: कट कट, हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में, तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: खट खट।
7: कौन है?
6: स्टेन।
7: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, हू दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, He never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? शी सेड कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो वो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

माधुरी दीक्षित सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही है। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफ कोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीठी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हम में से कौन टिकेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: जाता हूँ ना, पापा जाग ही रहे होते हैं। वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है
1: सर। मैं जब भी घर

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनरा को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वॉज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी। एंड व्हाट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
4: I don't have to mouth those.
5: Sorry, bro. Sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
3: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी franchise में lines ना मिले, सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood bol dal
2: Bollywood Bollywood Bollywood bol dal
1: only on Mirchi it's hot।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: जाती हो?
1: हो जाती आजादी है?
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: muskelrei. Pelle Zerner am Muskelrei.
1: Pelle Zerner am Muskelrei.
2: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी. अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे. यश चोपड़ा यूज टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल. श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी. सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट. अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में ये सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में. तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी. उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में. सो डोंट यू गो एनीवेयर.

0: दादू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

पुरानी जींस पे आपको श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? You will be shocked to know, you will be surprised to know. Well, ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही
1: हाँ
2: मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने में चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के शरारत का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हूँ श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी। हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हूँ श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो, हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग बाय सुरेश वाडकर, कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट। अगरकर।
6: अगरकर हूँ।
5: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
6: खट खट, हू दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
7: सावन का महीना पवन करे सोर।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: कुछ कहता है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
5: Toilet? हाँ। School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
4: तो दोनों।
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा, नहीं? आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खट खट।
7: Who there?
6: Whom are you?
7: Whom are you who?
8: अरे whom are you looking for madam?
7: खट खट। Who there?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं, मैं और आप गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबां पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआर यूआई श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.